0: कहानी तुहानू सुनाउंदा। प्रोग्राम खेड संसार हर मंगलवार रात 9:30 सिर्फ आकाशवाणी जलंधर ते।
1: साइबर फ्रॉड या धोखाधड़ी की जानकारी लई 1930 हेल्पलाइन नंबर डायल करो या www.cybercrime.gov.in ते शिकायत दर्ज करवाओ।
2: असी अक्सर चीजा भूल जाते हाँ। बहुत चंगा लगता है जदों तुहाडा कोई ख्याल रखता है, जिवें RBI ख्याल रखता है तुहाडी अनक्लेम जमा राशि दा।
3: अनक्लेम डिपॉजिट मतलब ओ बैंक खाते जिन्हां विच 10 साल जां उस तों वध समय लई कोई लेन देन नहीं कीता होवे। ए खाते RBI दे DEA फंड विच जमा हो जांदे हन। अपने बैंक दी किसी भी शाखा विच जाओ अते अपना KYC अपडेट करवाओ अते अपने अनक्लेम डिपॉजिट वापस प्राप्त करो। RBI कहिंदा है जानकार बनो, सतर्क रहो।
4: प्रभजोत जी, मैं सुनिया वसदे वेड़े प्रोग्राम च कुछ तब्दीली हुई है।
5: बिल्कुल सुखजीत जी, तब्दीली तो हुई है।
4: ओ केड़ी तब्दीली है भाई?
5: देखो जी, जेड़ा प्रोग्राम आंदा सी ना बुधवार नु, ते ओ हुन हो गया शनिवार नु।
4: यानी कि झांजरां दे बोर हुन शनिवार छन क्या करनगे?
5: बिल्कुल जी, ते जेड़े शनिवार नु प्रोग्राम सी ना, मेरी कलम तो सांझ शक्ति रूपा, ए तुसी सुन सकोगे बुधवार नु।
4: यानी कि बुधवार दी झांजरां दे बोर वाली फरमाइश शनिवार नु छन क्या करेगी, ते शनिवार दे सारे सिलसिले असी बुधवार पेश करया करांगे
5: जी।
0: एक विशेष सूचना, आकाशवाणी जलंधर वालों कुछ खाली स्टाफ क्वार्टर ते ऑफिस स्पेस किराए जां लीज ते दित्ते जाण दा प्रस्ताव है, जो सिर्फ केंद्र सरकार, सूबा सरकार, जनतक खेतर दे अदारे यानी PSU ते विधानिक संस्थावां नूं दित्ते जाणगे। इन्हां च शामिल ने आकाशवाणी जलंधर स्थित ऑफिस स्पेस ते आकाशवाणी स्टाफ कलोनी BMC चौंक जलंधर ते अर्बन एस्टेट फेज 1 जलंधर स्थित रिहायशी फ्लैट्स। चावान आकाशवाणी जलंधर दे उप महानिदेशक नाल संपर्क करन। फोन नंबर है 0181-298-3036। ईमेल आईडी jalandhar@prasarbharati.gov.in।

0: बल। जो कहानियाँ हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: खेडा नू उत्साहित करन लई आकाशवाणी जलंधर दा शानदार उपराला प्रोग्राम खेड संसार। गिरगिट वांग रंग बदल दी क्रिकेट दे भेद दसदा, हॉकी दी चलाकी दिया रमजा बयान करदा, खिडारियां दा जनून, मैदाना दा रोमांच, मैदाना च जित दी खुशी ते हार तो सबक लैण दी दिलचस्प।

4272 है जी सफलता दी कुंजी, मतलब वो नंबर जिदे राही तुसी शिरकत कर सकते हो प्रोग्राम दे विच ते अपने पसंदीदा गीत नू एंजॉय कर सकते हो। कहिंदे तूफाना विच गेड़े खांदा डिग्गिया आ किनारे ते, तूफाना विच गेड़े खांदा डिग्गिया आ किनारे ते, लोकां पाणी सौरस बड़े सी मैनू पता ए खारे ने, ढिलना पैंदा उम्मीद दा धागा आसा दे नाल कस जांदे, कुछ यार किताबां वर्गे मेरे गल पते दी मैनू दस जांदे, पहला पहला कौड़े लगदे फिर दिलां दे विच वस जांदे। बिल्कुल जी, यार जिहड़े पहला पहला कौड़े लगण ना हमेशा ही दिलां दे विच अखीर च वस जांदे ने। वैसे भी जेकर तुसी कोई अपना दोस्त बनाउणा है ना, ते दोस्त बनाउणा है नमक वर्गा, क्योंकि इतिहास गवाह है भी नमक दे विच कदे भी कीड़े नहीं लगदे।

0: हेलो फरमाइश जी।
1: शुक्रिया भैन जी, बहुत बहुत धन्यवाद थोड़ा भी कॉल अटेंड करने लई।
0: जी जी जी तो नछत्तर जी, कॉल तुम मिलाई है, इन्नी कोशिश करके मिलाई है, तो गीत दस दो, मैनू केड़ा सुनना चाहते हो?
1: गीत अज सदा बहार गीत सुनना जी, महिंदर कपूर की आवाज ते फिल्म का नाम है जी हमराज
0: जी,
1: ते गीत दे बोल है ना वो छुपा के जीओ।
0: वाह जी वाह, लो जी फिर गीत हाजिर है जी रेडियो सेट ते, ते फोन करने लई बहुत बहुत शुक्रिया जी।
1: शुक्रिया भैन जी, बहुत बहुत मेहरबानी
0: मेहरबानी जी, शुक्रिया तुसी कॉल कीती है ते जुड़े हो आकाशवाणी दे नाल जी। चाहते हो तुम भी तुहाड़ी कॉल मिले तो फिर 0182 42 173 नंबर एक बार फिर नोट कर लो जी, 0181 2342 173। इस वेले स्टूडियो की कड़ी के मुताबिक 10:50 37 हो गए ने। कहिंदे खुशी एक एहसास जिदी हर एक नूं तलाश, गम अजिहा अनुभव जो हर एक दे पास, पर जिंदगी उही जिउंदा जिन्हों अपने आप से विश्वास। इस करके अपने आप से विश्वास रखना है और हार नूं कदे भी मनना नहीं, क्योंकि जदों हार मन ली ना उदो असल च हार हुंदी है। हार का मतलब है एक बार फिर तो कोशिश करो, कितना कितने छोटी मोटी कमी रह गई सी। इस करके हमेशा याद रखना है भी पतझड़ दे पिछों सदा आउण बहारा, पतझड़ दे पिछों सदा आउण बहारा, जित्तां दा शौंकी हाँ मैनू मंजूर ना जी हारा। इस करके हार नू मनना नहीं, अगे वधना सबक नू सीख के और इंजॉय करना।

0: 2.8 ਮੈਗਾਹਰਟਸ ਤੇ ਐਫਐਮ 100.9 ਮੈਗਾਹਰਟਸ ਤੁਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ। 11 ਵਜ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਓ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਚਾਰ।
1: ਨਮਸਕਾਰ, ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਸਮਾਚਾਰ ਕੇ ਸਾਥ ਮੈਂ ਨikhil Kumar। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं से बड़े सपने देखने तथा लेखा, वित्त, कानून और परामर्श से जुड़ी ऐसी संस्थाओं के निर्माण की अपील की है जो वैश्विक स्तर की हों। वे कल दिल्ली विश्वविद्यालय के श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के शताब्दी समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भारतीय मूल के कई लोग दुनिया की शीर्ष कंपनियों का नेतृत्व कर रहे हैं। श्री मोदी ने कहा कि वैश्विक अनिश्चितता के बावजूद भारत की तिमाही वृद्धि दर 7.8% रही है, जो इसकी बढ़ती आर्थिक क्षमताओं को दर्शाती है। उन्होंने कहा कि भारत ने नीतिगत मामलों में गतिरोध से गतिशीलता तक का लंबा सफर तय किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत आज सबसे तेजी से आर्थिक प्रगति करता हुआ देश है।
2: मुझे विश्वास है हम 140 करोड़ भारतीय मिलकर अपने देश को विकसित भी बनाएंगे, आत्मनिर्भर भी बनाए। आने वाले समय में भारत मैन्युफैक्चरिंग का हब होगा, आने वाले समय में रिसर्च एंड इनोवेशन का हब हिंदुस्तान होगा, भारत एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट की सुपर पावर होगा।
1: गृहमंत्री अमित शाह आज गोवा में पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की 28वीं बैठक की अध्यक्षता करेंगे। वे गृह मंत्रालय की बैठक का नेतृत्व करेंगे और भारतीय जनता पार्टी के नए प्रदेश कार्यालय का उद्घाटन भी करेंगे। गृहमंत्री 3 दिन के दौरे पर कल गोवा पहुंचे। डॉक्टर दिनेश शर्मा को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है। वे अवकाश प्राप्त एडमिरल देवेंद्र कुमार जोशी का स्थान ग्रहण करेंगे। डॉक्टर शर्मा फिलहाल उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के सांसद हैं और वे राज्य के उप मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। डॉक्टर शर्मा ने कहा कि वे अपनी नई जिम्मेदारी को पूरी ईमानदारी के साथ निभाएंगे। छत्तीसगढ़ में जगदलपुर की राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण की विशेष अदालत ने झीरम घाटी में माओवादी हमले के मामले में सभी 10 आरोपियों को दोषी ठहराया है। अदालत ने आरोपियों को 29 लोगों की हत्या और 15 अन्य की हत्या के प्रयास का दोषी पाया है। इनकी सजा पर अंतिम फैसला 16 सितंबर को होगा। मई 2013 में झीरम घाटी में कांग्रेस नेताओं के काफिले पर हमला किया गया था। इसमें कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं सहित 29 लोग मारे गए थे। नेपाल बाढ़ में मृतकों की संख्या 1344 हो गई है। 590 विदेशी नागरिकों सहित लगभग 5000 लोग अभी भी लापता हैं। अब तक 13,100 से अधिक लोगों को बचाया जा चुका है। मृतकों की पहचान के लिए डीएनए परीक्षण का सहारा भी लिया जा रहा है। मिस्र की एक अदालत ने टीवी एंकर सारा खलीफा समेत 12 लोगों को ड्रग्स तस्करी मामले में मौत की सजा सुनाई है। अदालत ने माना कि आरोपी एक आपराधिक गिरोह चला रहे थे जो मादक पदार्थों के निर्माण और बिक्री के लिए कच्चा माल आयात करता था। आरोपियों के पास से अवैध हथियार होने की बात भी सामने आई है। सारा खलीफा ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों से इनकार किया है। उनका कहना है कि अधिकारियों ने उन्हें नशीले पदार्थों के साथ तस्वीरें खिंचवाने के लिए मजबूर किया था। नई दिल्ली में 12 और 13 सितंबर को आयोजित होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन सहित आई ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का भी आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम में वित्त मंत्री, 500 से अधिक संस्थागत निवेशक तथा उद्योगपति शामिल होंगे। आई ब्रिक्स का उद्देश्य ब्रिक्स के 21 सदस्य देशों और साझेदार देशों में संप्रभु पूंजी का उपयोग विश्वसनीय बुनियादी ढांचे, ऊर्जा और डिजिटल क्षमता परियोजनाओं के लिए करना है। इस सम्मेलन में सीमा पार निवेश, गैर डॉलर निपटान और भुगतान प्रणालियों पर चर्चा होगी। भारत की अध्यक्षता में 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन नई दिल्ली के भारत मंडपम में संपन्न होगा। सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित उस वीडियो का खंडन किया है जिसमें कहा जा रहा है कि दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का रनवे बारिश के पानी में डूबा हुआ है। पत्र सूचना कार्यालय ने बताया कि वीडियो अप्रैल 2024 का है, जब दुबई हवाई अड्डे पर तेज बारिश हुई थी। बैडमिंटन में भारत के सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी चाइना मास्टर्स के फाइनल में पहुंच गए हैं। फाइनल में आज उनका सामना चीन के हे जी टिंग और रेन जियांग यू की जोड़ी से होगा। सात्विक और चिराग ने सेमीफाइनल में मलेशिया के नूर मोहम्मद अजरियन अयूब और टेन वी क्योंग को हराया था। दुबई में महिला क्रिकेट के 2020 एशिया कप के ग्रुप ए मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान को हरा दिया है। पाकिस्तान की टीम ने 18 ओवर

0: गेंद में 55 रन बनाए थे। जवाब में भारतीय टीम ने 8 ओवर और 4 गेंद में यह लक्ष्य हासिल कर लिया था। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलो हर्ट्ज ते असी आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। आओ हुण सुनदे हां प्रोग्राम धमक जलंधर पैंदी। इस प्रोग्राम च तुसी सुनदे हो अपने मनपसंद पंजाबी गीत। इस प्रोग्राम च अपनियां फरमाइशां भेजण लई वट्सएप नंबर नोट करो जी 94 65 53 60 77 ते टाइप करो जी अपने मनपसंद गीतां दे बोल, अपना नाम ते अपने शहर दा नाम ते सानू वट्सएप राही भेज दिओ जी। पेश है प्रोग्राम धमक जलंधर पैंदी।

पटियाला तो फरमाइश भेज रहे ने जी। पिंकी फरमाइशकारे ने हैप्पी राय कोटी की आवाज़ विच गीत सुनन दी। श्री फतेहगढ़ साहिब तो रामनाथ अतापुर, सुखमनजीत सिंह, सहजप्रीत कौर, गिदड़बाहा तो

पटियाला तो फरमाइश भेज रहे ने जी। पिंकी फरमाइशकारे ने हैप्पी राय कोटी की आवाज़ विच गीत सुनन दी। श्री फतेहगढ़ साहिब तो रामनाथ अतापुर, सुखमनजीत सिंह, सहजप्रीत कौर। गिदड़बाहा तो मनजीत तनेजा, परवीन तनेजा, पायल, निताशा, कैरवी तनेजा। पदमपुर तो भगवान दास तनेजा, पवन कुमार, योगेश तनेजा, आस्था तनेजा, मोहित मकर, मुखी राम जी ते पूजा। श्री मुक्तसर साहिब तो नछत्तर सिंह ढिल्लों, मनजीत कौर, अजमन कौर, जगमीत कौर। महाराष्ट्र तो लक्ष्मण राव, कल्पना, शैलेश, प्रतीक्षा, स्वप्निल, रक्षता, रियांश। बरका खाना तो अफजल, शाहीन, सोनू, कमल, मोहम्मद अफजल मलिक। तपा मंडी तो शमशेर सिंह, सतपाल मान। मुकरानपुर तो नरेंद्र चावला, हरीश, प्रिंस, मुस्कान, प्राची, तनमीत, मनी, पीयूष, नेहा ते ओम। महाराष्ट्र तो अभिजीत, सरिता, एकांश, सिद्धांत, अर्जुन। सीतामढ़ी तो इशरत, वसीम, रुबीना, आरिज, नदीम, शमीम, ममता, पूनम ते इना दे बहुत सारे साथी। आओ इन्ह सारे की रली मिली फरमाइश से सुनते हाँ अज्ज दे प्रोग्राम दा अगला गीत हैप्पी रायकोटी की आवाज़ विच।

संतों सुल्तान राम, सरस्वती देवी, हरबंस लाल, बनवारी लाल, गोपी राम, ललित कुमार, नरेंद्र, मीनाक्षी, मोनिका, तेग गीतांजलि, सुरेश खुराना, पप्पी खुराना, किरण खुराना, लव्य, आरव, एस के पप्पी, ए फरमाइश भेजने जी ग्वालियर तो, कंगनपुर जिला तो कसूर जाफर, मेव अब्दुल, गफूर ते मोहम्मद सरवर, कृष्णा पार्क दिल्ली तो सुखविंदर सिंह जौड़ा, सीटी दीवाना गुरवंश सिंह जौड़ा, बलविंदर सरां, गुनताज, रमनदीप, मनिंदर सरां, ये फरमाइश भेजने जी हनुमानगढ़ तो, श्री फतेहगढ़ साहिब तो बलविंदर बिल्ला, माधोपुरी राज कौर, ज्योति गोल्डी, बब्बू टिवाना, लुधियाना तो मनदीप सिंह दीपा, ते महस गेट नाभा तो सोमदत्त, कैरव, ज्योति राणी, गुरमन्नत, फरमाइश कर रहे जी गुरदास मान की आवाज़ विच इस गीत नु सुनन दी।

अगली फरमाइश भेज रहे ने जी सानू। सरन कौर मखन सिंह बठिंडा तो फरमाइश कर रहे ने हरजीत हरमन की आवाज़ विच कोई भी गीत सुना दिता जावे। तरन तारन तो गुरदर्शन सुनीता शमी रजनी आकाशदीप अनहद ते गुरशबद। फजिलका तो भूषण खेड़ा विशु खेड़ा विशाल खेड़ा ते लाडी खेड़ा शालनी खेड़ा ते इना दा सारा खेड़ा परिवार। राजस्थान तो अमित कुमार सरोज सुमन वेदपाल राकेश शकीला रोहिणी अभिनव सानवी मीकू शशि बिश्नोई अर्पित बिश्नोई ते इना दा सारा परिवार फरमाइश भेज रहे ने जी। नारायणपुर तो फरमाइश भेज रहे ने ओम प्रकाश राय उषा राय अमित कुमार हैप्पी राय प्रतीक राय श्रीमती रोशनी राय ते प्रांजल राय गाजीपुर तो। छत्तीसगढ़ तो गुलाबदास मणिकपुर राजादास मणिकपुर। मोगा तो जगदीश सिंह वीरपाल कौर ते गुरबख्श सिंह मठाड़ू। श्री फतेहगढ़ साहिब तो रिम्पी सिंह पाल सिंह सलीम खान तनवीर कौर। फजिलका तो गुरदीप सिंह कटवाल मीतोबाई सुखचैन राणो परवीन नवीन अनमोल बूटा मनीता नवदीप खुशदीप निर्मल परमजीत गुरसेवक गुरबख्श साहिबा ते मिर्जा। आओ इन्हां सारिआं दी रली मिली फरमाइश ते सुनदे हाँ हरजीत हरमन की आवाज़ विच ए गीत।

राजहां ये फरमाइश भेज रहे ने उत्तराखंड तो, पिंड चंदमड़ी तो मंगत राम, जगदीश रानी, संदीप मिड्डा, ममता रानी, अभिषेक मिड्डा ते दिव्या फरमाइश कर रहे ने जी अमरिंदर गिल की आवाज़ विच एक गीत सुना दिता जाए। आओ इन्हां सारिआं दी रली मिली फरमाइश ते सुनदे हाँ अज दे प्रोग्राम दा आखरी गीत अमरिंदर गिल की आवाज़ विच।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं से बड़े सपने देखने तथा लेखा, वित्त, कानून और परामर्श से जुड़ी ऐसी संस्थाओं के निर्माण की अपील की है जो वैश्विक स्तर की हों। वे कल दिल्ली विश्वविद्यालय के श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के शताब्दी समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भारतीय मूल के कई लोग दुनिया की शीर्ष कंपनियों का नेतृत्व कर रहे हैं।
1: भारत की ग्लोबल कंसल्टिंग फर्म्स क्यों नहीं हो सकती? हमारी अकाउंटिंग फर्म, हमारी लीगल फर्म, हमारी फाइनेंशियल फर्म, ये सब ग्लोबल लीडर्स क्यों नहीं बन सकती? हम गर्व से कहते हैं कि आज भारतीय दुनिया की टॉप कंपनीज को लीड कर रहे हैं। अगर भारतीय दुनिया की टॉप कंपनियों को लीड कर रहे हैं तो भारतीयों की बनाई कंपनियां दुनिया को क्यों लीड न करें?
0: श्री मोदी ने कहा कि वैश्विक अनिश्चितता के बावजूद भारत की तिमाही वृद्धि दर 7.8% रही है, जो इसकी बढ़ती आर्थिक क्षमताओं को दर्शाती है। उन्होंने कहा कि भारत ने नीतिगत मामलों में गतिरोध से गतिशीलता तक का लंबा सफर तय किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत आज सबसे तेजी से आर्थिक प्रगति करता हुआ देश है।
1: दुनिया भारत को फ्रेजाइल 5 बता रही थी, आज दुनिया भारत को फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी बनते हुए देख रही। 7.8% क्वार्टरली ग्रोथ ने देश का जोश बढ़ाया है। और इसी बीच जापानीज क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने भारत की रेटिंग अपग्रेड कर दी है।
0: गृहमंत्री अमित शाह आज गोवा में पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की 28वीं बैठक की अध्यक्षता करेंगे। वे गृह मंत्रालय की बैठक का नेतृत्व करेंगे और भारतीय जनता पार्टी के नए प्रदेश कार्यालय का उद्घाटन भी करेंगे। गृहमंत्री 3 दिन के दौरे पर कल गोवा पहुंचे। डॉक्टर दिनेश शर्मा को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है। वे अवकाश प्राप्त एडमिरल देवेंद्र कुमार जोशी का स्थान ग्रहण करेंगे। डॉक्टर शर्मा फिलहाल उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के सांसद हैं और वे राज्य के उप मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। छत्तीसगढ़ में जगदलपुर की राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण की विशेष अदालत ने झीरम घाटी में माओवादी हमले के मामले में सभी 10 आरोपियों को दोषी ठहराया है। अदालत ने आरोपियों को 29 लोगों की हत्या और 15 अन्य की हत्या के प्रयास का दोषी पाया है। इनकी सजा पर अंतिम फैसला 16 सितंबर को होगा। मई 2013 में झीरम घाटी में कांग्रेस नेताओं के काफिले पर हमला किया गया था। इसमें कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं सहित 29 लोग मारे गए थे। नेपाल में बाढ़ में मृतकों की संख्या 1344 हो गई है। 590 विदेशी नागरिकों सहित लगभग 5000 लोग अभी भी लापता हैं। अब तक 13100 से अधिक लोगों को बचाया जा चुका है। मृतकों की पहचान के लिए डीएनए परीक्षण का सहारा भी लिया जा रहा है। चीन के चियांगशी प्रांत में तेज बारिश के बाद भूस्खलन में 2 लोगों की मौत हो गई है। तूफान सॉडेल से कई दिनों की मूसलाधार बारिश के कारण ये आपदा हुई है। मिस्र की एक अदालत ने टीवी एंकर सारा खलीफा समेत 12 लोगों को ड्रग्स तस्करी के मामले में मौत की सजा सुनाई है। अदालत ने माना कि आरोपी एक आपराधिक गिरोह चला रहे थे जो मादक पदार्थों के निर्माण और बिक्री के लिए कच्चा माल आयात करता था। आरोपियों के पास अवैध हथियार होने की भी बात सामने आई है। सारा खलीफा ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों से इनकार किया है। नई दिल्ली में 12 और 13 सितंबर को आयोजित होने वाली ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से इतर आई ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का भी आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम में वित्त मंत्री और 500 से अधिक संस्थागत निवेशक तथा उद्योगपति शामिल होंगे। आई ब्रिक्स का उद्देश्य ब्रिक्स के 21 सदस्य देशों और साझेदार देशों में संप्रभु पूंजी का उपयोग, विश्वसनीय बुनियादी ढांचे, ऊर्जा तथा डिजिटल क्षमता परियोजनाओं के लिए कार्य करना है। भारत की अध्यक्षता में 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन नई दिल्ली के भारत मंडपम में संपन्न होगा। सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी तीसरी बार चाइना मास्टर्स बैडमिंटन प्रतियोगिता के फाइनल में पहुंच गए हैं। विश्व की 5वें नंबर की जोड़ी ने सेमीफाइनल में मलेशिया के नूर मोहम्मद अजरन अयूब और टेन वी क्योंग को हराया। उधर दुबई में 2020 महिला क्रिकेट एशिया कप के ग्रुप ए के मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान को हरा दिया है। पाकिस्तान की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 55 रन बनाए थे, जवाब में भारतीय टीम ने 8 ओवर और 4 गेंद में ये लक्ष्य हासिल कर लिया। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: असी आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। दोपहर दे 12:05 हो रहे हैं।

0: गल करदे आ और खास करके AI दे उपर बच्चियां दी निर्भरता दी गल करदे आ ते इह सारियां चीज़ां ही शामिल हो चुकियां ने अज दे समें दे विच।
1: लो जी प्यारे बच्चियो, तुहाडे नाल होर भी बहुत सारियां गल्लां करांगे, प्यारे बच्चियां दीआं हाजरियां भी लगवावांगे जिन्हां ने अज सानूं रिकॉर्डिंग्स करके भेजियां ने। और उस तों पहलां प्यारे बच्चियो चलदे आ इक खूबसूरत जिहा म्यूजिकल ट्रैक दे वल।

0: वहां जाती हूँ, याद करो और बूझो मुझको, नाम मेरा अब तुम बतलाओ, सोचो सोचो।
1: ताल दादरा, हमारी पांचवी पहेली है, गोल मटोल है मेरी काया, रस्सी खींची तो सुर आया, थापन मेरी स्तुति गान, लोक संगीत की मैं हूँ शान, अब सोचो और बताओ, सीखने की चाह जगाओ, बताओ तो
2: ढोलक। धन्यवाद।
3: लो जी, धन्यवाद इन्हां बच्चियां दा भी जिन्होंने इन्नियां खूबसूरत संगीत रूपी जिहड़ियां बुझारतां ने ना वह पाईआं ने। और प्यारे बच्चे हो, ये वालियां बुझारतां ना तुसीं AI नूं भी पुछ के देखणियां, क्योंकि AI नूं शायद इन्हां बुझारतां दे आंसर ना ही पता होण। प्यारे बच्चिओ, जदों असीं एक दूजे दे नाल मिल मिला के बहिंदे आ तां बहुत कुछ सीख जांदे आ। सो इन्हां बुझारतां दे पिछे साडे ब्रेन नूं डिवेलप करन वाली एक थ्यूरी चलदी है, साडा दिमाग फालतू दे घोड़े नहीं दड़ाउंदा, सगों पॉजिटिव सोच वाले काम करदा है। और इस करके प्यारे बच्चियां ने

0: और वाकई प्यारे बच्चों ये जमे रहो वाला नारा जड़ा ना बड़ा जरूरी है और अजकल तुसी इस चीज नु सुनदे हो कंसिस्टेंसी है बड़ी जरूरी है सोशल मीडिया दे उपर जे तुसी कामयाब होना चाहते हो। और प्यारे बच्चों ये जेड़ी कंसिस्टेंसी है इनू यही किया जाता है कि तुसी किसी भी सब्जेक्ट ते मास्टरी हासिल करनी है ना ते तुसी ओदे नाल जुड़े रहो उनू समझदे रहो अच्छे तरीके दे नाल बुक वॉर्म नहीं बनना सगो चंगी तरीके दे नाल थोरो स्टडी करके उस सब्जेक्ट नू समझ लैना फिर वो मुश्किल भी नहीं लगेगा और फिर वो औखा भी नहीं लगेगा। और प्यारे बच्चे हुण खोलन वाले हां असी नॉलेज टाइम दा पटारा और नॉलेज टाइम दे पटारे दे विच खूब सारियां जानकारियां तुहाडे नाल असी सांझियां करांगे उन्हां खास दिनां दियां जिन्हां नूं दुनिया भर दे विच मनाया जांदा है और भारत दे विच भी मनाया जांदा है। और एक खास दिन इस करके कि तुहाडी नॉलेज दे विच वाधा कर दिता जावे और तुहानूं एक नवां आयाम भी दुनिया दा दस दिता जावे। सो सब तो पहला पता गुरप्रीत मैनूं की याद आउंदी पई है नॉलेज टाइम वाली गल ओह इह आउंदी पई है कि खेडां वतन पंजाब दियां जिहड़ियां ने ओह शुरू हो चुकियां ने बच्चियां दियां और प्यारे बच्चो इहदे विच पार्टिसिपेट भी तुसी कर सकदे हो और इन्हां नूं देख के अपने आप नूं मोटीवेट भी कर सकदे हो कि किवें बच्चे खूब जिंद जान लगा के इन्हां खेडां दे विच पार्टिसिपेट करदे ने और फिर वधिया वाले गोल्ड वाले सिल्वर वाले और ब्रोंज वाले तमगे हासिल करदे ने इन्हां खेडां तों।
1: और जदों असीं गल करदे आ इन्हां खास खेडां दी ते किस तरीके दे नाल वड्डा खेडां दा महाकुंभ इहनूं मन्निया जांदा है और पिंडां दी शहरां दी गल करदे आ ते हर बच्चा जिहड़ा है इस दे विच पार्टिसिपेट करदा है और करके एक जज्बा अपने अंदर भरदा है कि असीं भी खेड रहे हां असीं भी अपने पिंड नूं अपने स्कूल नूं अपने घर नूं अपने पेरेंट्स नूं हर उस चीज़ नूं रिप्रजेंट कर रहे हां जिस नूं खास करके साडे उपर माण है। और जदों इह माण वाली गल कीती जांदी है ते इहो जिहियां खेडां खेडना जिहड़ा है बच्चे बहुत ज़्यादा जरूरी है जिस दे नाल तुहाडा सर्व पक्षी विकास हो सके फिजिकल और मैंटल ग्रोथ के लिए खास करके असी खेडां खेडदे हाँ। जरूरी नहीं है कि उस कॉम्पीटिशन नूं जितना ही जिहड़ा है वो साडी जिंदगी दा असली जनून होना चाहिए है लेकिन इस दे कोलों केड़ी सिख्या असी खास करके लैनी है वह ज़्यादा तो बहुत ज़्यादा जरूरी है। और कॉम्पीटिशन जिहड़ा है मुकाबला जिंदगी दे विच हमेशा अगे तो अगे वधदा रहिंदा है जिस तरीके दे नाल वख वख दिन हफ्ते असी मना रहे हुंदे हां उहनां दे विच भी एक आपस दे विच कॉम्पीटिशन एक मुकाबला हो रहा हुंदा है कि किस तरीके दे नाल ये खास दिन जिहड़े ने ये मनाए क्यों जांदे ने इहनां दी जरूरत क्यों पई और किस तरीके दे नाल असी इन्हां नूं मना रहे हैं कि सार्थकता असी इन्हां दी साबित कर रहे हां कि नहीं कर रहे। सो पहले दिन दी गल करदे हां जी।
0: सो पहला दिन है जी 8 सितंबर दा दिन और इस दिन नूं मनाया जांदा है इंटरनेशनल लिटरेसी डे वजो यानी साखरता दिवस वजो प्यारे बच्चे मनाया जांदा है कि दुनिया दे विच किन्ने लोक पढ़े लिखे हो चुके ने और ए पढ़ाई प्यारे बच्चे तुसी जानदे हो कि जिंदगी दे विच किन्नी जरूरी है हर किसे काम नू करन दे लई सानू पढ़ना लिखना आना चाहिदा है। और इत्थों तक भी कि जे असी पैसे कमा भी चुके हाँ तो सानू उहदा हिसाब रखण दे लई मैथ दी नॉलेज चाहिए है और जे असी कोई चीज़ा लिखणियां ने तो उहदे लई सानू लिखना पढ़ना आना चाहिए है। सो इस करके ये लिटरेसी डे सानू ये याद कराउंदा है कि साडे मुल्क दे साडी इस धरती दे किन्ने लोक अपने ज़हना नू रोशन करके पढ़ लिख चुके ने।
1: जिथे एक पासे असी 8 सितंबर नू इंटरनेशनल लिटरेसी डे मना रहे हां उत्थे ही 8 सितंबर नू खास करके वर्ल्ड फिजिकल थैरेपी डे जिहड़ा है बच्चे मनाया जा रहा है। और जदों असी फिजियोथैरेपी की गल करते हाँ या फिजिकल थैरेपी की गल करते हाँ तो सानू सारियां उन्हां मुश्किलां तों बचाउंदा है जिहड़ियां कि खेडदे समय या किसी भी तरीके दे नाल टुट पण दे नाल साडी बॉडी दे विच किसी तरह की किसी किस्म की कोई परेशानी जिहड़ी है वह पैदा कर रही ने। सो यह दोबारा तो अपनी मूवमेंट्स नू पुनर्जागृत करन दे लई अपने आप नू इंजरी तो बचाउण दे लई अपनी रखिया करन दे लई इन्हां चीज़ां दा इस्तेमाल खास करके इन्हां थैरेपीज़ दा इस्तेमाल किया जाता है और किया जाना भी चाहिए है। कदी भी जिहड़ा है बहुत ज़्यादा घरेलू तरीके दे नाल उपचार जिहड़े ने उह करने नहीं चाहिए ताँ कि सही तरीके दे नाल सुचज्जे तरीके दे नाल अपने शरीर की समय रहिंदिया रखिया सुरक्षा की जा सके ताँ कि जदों तुसीं वडेरी उमरे जाओ तो उदों ज़्यादा मुश्किलां ना आ सकन।
0: सो प्यारे बच्चे तुहाडी नॉलेज दे विच वाधा कर दईए ताँ जो तुसीं अगे जिंदगी दे विच वध के इस फील्ड दे विच भी जा सको। फिजियोथेरेपी हुण सिर्फ मालिश तक सीमित नहीं रह गई सगों ये एक

0: टॉप कंपनियों को लीड कर रहे हैं तो भारतीयों की बनाई कंपनियां दुनिया को क्यों लीड न करें।
1: श्री मोदी ने कहा कि वैश्विक अनिश्चितता के बावजूद भारत की तिमाही वृद्धि दर 7.8% रही है, जो इसकी बढ़ती आर्थिक क्षमताओं को दर्शाती है। उन्होंने कहा कि भारत ने नीतिगत मामलों में गतिरोध से गतिशीलता तक का लंबा सफर तय किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत आज सबसे तेजी से आर्थिक प्रगति करता हुआ देश है।
0: दुनिया भारत को फ्रजाइल फाइव बता रही थी, आज दुनिया भारत को फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी बनते हुए देख रही है। 7.8% क्वार्टरली ग्रोथ ने देश का जोश बढ़ाया है और इसी बीच जापानीज क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने भारत की रेटिंग अपग्रेड कर दी है।
1: मध्य प्रदेश के सागर जिले में जहरीली शराब पीने से 9 लोगों की मौत हो गई है। 12 से अधिक लोगों का उपचार चल रहा है। प्रशासन ने घटना की जांच के आदेश दिए हैं। छत्तीसगढ़ में जगदलपुर की राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण की विशेष अदालत ने झीरम घाटी में माओवादी हमले के मामले में सभी 10 आरोपियों को दोषी ठहराया है। अदालत ने आरोपियों को 29 लोगों की हत्या और 15 अन्य की हत्या के प्रयास का दोषी पाया। इनकी सजा पर अंतिम फैसला 16 सितंबर को होगा। मई 2013 में झीरम घाटी में कांग्रेस नेताओं के काफिले पर हमला हुआ था। इसमें कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं सहित 29 लोग मारे गए थे। नेपाल बाढ़ में मृतकों की संख्या 1344 हो गई है। 590 विदेशी नागरिकों सहित लगभग 5000 लोग अभी भी लापता हैं। अब तक 13100 से अधिक लोग बचाए जा चुके हैं। मृतकों की पहचान के लिए डीएनए परीक्षण की सहायता भी ली जा रही है। चीन के चियांगशी प्रांत में तेज बारिश के बाद भूस्खलन में 2 लोगों की मौत हो गई है। तूफान सॉडेल से कई दिनों की मूसलाधार बारिश के कारण ये आपदा आई। ईरान के कुर्द शहर सरंदज में एक ईंधन टैंकर में विस्फोट होने से 11 लोगों की मौत हो गई और 7 लोग घायल हुए हैं। ये टैंकर कई कारों से टकराने के बाद आग की चपेट में आ गया। रिपोर्ट के अनुसार ब्रेक प्रणाली में खराबी के कारण यह दुर्घटना हुई। डॉक्टर दिनेश शर्मा को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है। वे अवकाश प्राप्त एडमिरल देवेंद्र कुमार जोशी का स्थान ग्रहण करेंगे। डॉक्टर शर्मा फिलहाल उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के सांसद हैं और वे राज्य के उप मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। नई दिल्ली में 12 और 13 सितंबर को आयोजित होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से इतर आई ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का भी आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम में वित्त मंत्री और 500 से अधिक संस्थागत निवेशक तथा उद्योगपति शामिल होंगे। आई ब्रिक्स का उद्देश्य ब्रिक्स के 21 सदस्य और साझेदार देशों में संप्रभु पूंजी का उपयोग, विश्वसनीय बुनियादी ढांचे, ऊर्जा और डिजिटल क्षमता परियोजनाओं के लिए करना है। इस सम्मेलन में सीमा पार निवेश, गैर डॉलर निपटान और भुगतान प्रणालियों पर भी चर्चा होगी। भारत की अध्यक्षता में 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन नई दिल्ली के भारत मंडपम में संपन्न होगा। सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी तीसरी बार चाइना मास्टर्स बैडमिंटन प्रतियोगिता के फाइनल में पहुंच गए हैं। खिताबी मुकाबले में आज दोपहर 1:50 पर भारतीय जोड़ी का सामना चीन के हे जी टिंग और रेन जियांग यू से होगा। उधर दुबई में 2020 महिला क्रिकेट एशिया कप के ग्रुप ए मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान को हरा दिया है। पाकिस्तान की टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए 19वें ओवर में महज 55 रन पर ही सिमट गई। जवाब में भारत ने 8 ओवर और 4 गेंद में ये लक्ष्य हासिल कर लिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: ਅਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਪੇਸ਼ ਹੈ ਜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਸਮਾਂ।

रात 9:30 बजे प्रोग्राम सुनोगे रुपकों का अखिल भारतीय कार्यक्रम। ते रात 10 बजे सुनोगे प्रोग्राम रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा। इस दरमियान समाचार ते मुख समाचार अपने निर्धारित समय ते वारोवार प्रसारित किते जाणगे।

0: दुख खबरी होवेगी। मेनू ते मेरे घर वाले नू HIV है ते मेनू डर है कि मेरे बच्चे नू भी HIV होवेगा।
1: ओ फेर ता तुहानू दो खुशखबरियां दिने आ।
0: ओ किवें डॉक्टर साहब?
1: HIV नाल जी रही कोई भी लेडी EVTHS प्रोग्राम अधीन ARV दवाइयां लेके एक सेहतमंद ते HIV मुक्त बच्चे नू जन्म दे सकदी है। बस शर्त ए है कि गर्भवती होण तों बाद सरकारी हस्पताल विच डॉक्टर दी सलाह नाल समय सिर दवाई शुरू कर ली जावे ते जनेपा हमेशा हस्पताल विच ही करवाया जावे। ए इलाज भी मुफ्त है।
0: वधेरे जानकारी लई टोल फ्री एड्स हेल्पलाइन नंबर 1097 ते कॉल करो। पंजाब स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित विच जारी।
2: तुसी सुन रहे हो जी प्रोग्राम फौजी वीरां लई। सुनदे आज दे प्रोग्राम दा अगला गीत।

0: हेलो,
1: नमस्कार। भारतीय दूर संचार नियामक प्राधिकरण आपको याद दिलाता है कि आपके मोबाइल नंबर पर असामान्य उपयोग का पता चला है और सेवा आज निलंबित कर दी जाएगी। अधिक जानकारी के लिए कृपया 9 दबाएं।
2: सावधान, अजेही कोई भी फोन कॉल फ्रॉड हो सकती है। कोई भी बटन दबण तो पहला एक मिनट ले रुको ते सोचो, पुष्टि जरूर कर लो। सावधान रहो, सुरक्षित रहो।
3: लगदा खुशखबरी आने वाली है।
4: खुशखबरी ता लोका दी हुंदी आ, साडी ता दुख खबरी होवेगी। मेनू ते मेरे घर वाले नु HIV है ते मेनू डर है कि मेरे बच्चे नु भी HIV होवेगा।
3: ओ फेर ता तुहानु दो खुशखबरियां दन्ने आ।
4: ओ किवें डॉक्टर साहब?
3: HIV नाल जी रही कोई भी लेडी EVTHS प्रोग्राम अधीन AR

0: है बब्बल, जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: लाओ जी, अज तुहानू दसांगा वायरल ना होण दे तरीके।
3: ओ लोकी तां वायरल होण दे तरीके दसदे आ, ते तू वायरल ना होण दा?
2: सोशल मीडिया ते वायरल होण नालों वी वध जरूरी है जिम्मेदार नागरिक बनना, ते उस दे लई जरूरी है ए जानना कि HIV एड्स किवें नहीं फैलदा। HIV एड्स नाल जी रहे व्यक्ति नूं छोण जां हथ मिलाउण नाल, संक्रमित व्यक्ति द्वारा वरते उपकरणां या भांडियां दे इस्तेमाल नाल, संक्रमित व्यक्ति द्वारा वरते गए गुसलखाने दे इस्तेमाल जां मच्छर दे कट्टण नाल।
4: वधेरे जानकारी लई टोल फ्री एड्स हेल्पलाइन नंबर 1097 ते कॉल करो। पंजाब स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित विच जारी।
5: ब्रेक तो बाद एक बार फिर स्वागत है जी। तुसी सुन रहे हो प्रोग्राम फौजी वीरां लई। सुणदे अज दे प्रोग्राम दा अगला गीत रूप कुमार राठौड़ दी आवाज़ विच।

0: दुनिया भारत को फ्रजाइल फाइव बता रही थी, आज दुनिया भारत को फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी बनते हुए देख रही है। 7.8% क्वार्टरली ग्रोथ ने देश का जोश बढ़ाया है। और इसी बीच जापानीज क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने भारत की रेटिंग अपग्रेड कर दी है।
1: कल दिन यूनिवर्सिटी के श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के शताब्दी समारोह को संबोधन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नौजवानों को बड़े सुपने देखने ते लेखा वित्तीय कानून ते कंसल्टिंग नाल जुड़िया अजिहियां संस्थावां बनाउण की अपील की जो दुनिया की अगवाई करन दे समर्थ होण। उन्होंने कहा कि अज भारतीय मूल के बहुत सारे लोग दुनिया दी चोटी दी कंपनियां दी अगवाई कर रहे हैं, भारतीय वालों स्थापित कंपनियां भी दुनिया की अगवाई कर सकदियां ने।
0: भारत की ग्लोबल कंसल्टिंग फर्म्स क्यों नहीं हो सकती? हमारी अकाउंटिंग फर्म, हमारी लीगल फर्म, हमारी फाइनेंशियल फर्म, ये सब ग्लोबल लीडर्स क्यों नहीं बन सकती? हम गर्व से कहते हैं कि आज भारतीय दुनिया की टॉप कंपनीज को लीड कर रहे हैं। अगर भारतीय दुनिया की टॉप कंपनियों को लीड कर रहे हैं तो भारतीयों की बनाई कंपनियां दुनिया को क्यों लीड न करें?
1: उन्होंने कहा कि भारत ने नीतिगत मामले में खड़ोत तो गतिशीलता तक एक लंबा सफर तय किया है। दुनिया देख रही है कि भारत आर्थिक तौर पर सब तो तेजी नाल आर्थिक तरक्की कर रहा देश है। प्रधानमंत्री ने कहा कि दहशतगर्दी नूं हराया गया ते आत्मविश्वास नाल भरे हथियारबंद बल दुश्मन ते गढ़ ते हमला कर रहे ने। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर तो उत्तर पूर्व तक शांति बहाल की गई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि अप्रैल ते जून दरमियान बिजली उत्पादन में 9% का वाधा होया। उन्होंने कहा कि इस समय दौरान वाहनों की विक्री में 20% तो वाधा दर्ज किया गया, जिसका मुख्य कारण दुपहिया वाहनों में 20% वाधा ते तीन पहिया वाहनों में लगभग 30% वाधा रहा है। उन्होंने कहा कि स्मार्टफोन दी बरामद हुण 25 लाख करोड़ रुपए तो वध है अते घरेलू रक्षा उत्पादन लगभग 2 लाख करोड़ रुपए तो सब तो उच्चे पद्धर ते पहुंच गया है। श्री मोदी ने कहा कि 140 करोड़ भारतीय मिल के भारत नूं विकसित अते आत्मनिर्भर बनाउणगे।
0: मुझे विश्वास है हम 140 करोड़ भारतीय मिलकर अपने देश को विकसित भी बनाएंगे, आत्मनिर्भर भी बनाएंगे। आने वाले समय में भारत मैन्युफैक्चरिंग का हब होगा, आने वाले समय में रिसर्च एंड इनोवेशन का हब हिंदुस्तान होगा, भारत एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट की सुपर पावर होगा।
1: इस मौके बोलते हैं शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की अगवाई हेठ भारत हुण तीजा सब तो वड्डा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। मध्य प्रदेश के सागर जिले में जहरीली शराब पीने वाले 10 लोगों की मौत हो गई है। 35 तो वध लोगों का हस्पताल में इलाज चल रहा है। सागर के जिला मजिस्ट्रेट प्रतिभा पाल ने इन मौतों की पुष्टि की है। लगभग 35 लोगों को हस्पताल में लिया गया, जिन्हों कुछ की हालत अजे भी नाजुक बनी हुई है। गंभीर मरीजों को बुंदेलखंड मैडिकल कॉलेज और सागर जिला हस्पताल में तब्दील किया गया है। यह मामला बांदा थाना खेत्र अधीन पेंदे पिंड नौरोजा ते गुगरा खुरद तो सामने आया है। घटना तो बाद पुलिस और प्रशासन दी टीमां मौके पर पहुंचियां। सागर के SP समेत सीनियर अधिकारी ने घटना वाली थां का जायजा लिया। पुलिस शराब के स्रोत और पूरे मामले की जांच कर रही है। ये खबरां तुसी आकाशवाणी तो सुन रहे हो। साडा एक्स हैंडल है @AIRRNU जलंधर। BJP के राज्यसभा मैंबर दिनेश शर्मा को अंडेमान ते निकोबार टापुआ का उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है। डॉक्टर शर्मा सेवामुक्त एडमिरल DK जोशी की थां लैणगे, जिन्होंने 8 अक्तूबर 2017 को अंडेमान निकोबार टापुआ के उपराज्यपाल वजो अहुदा संभालिया। 62 साला डॉक्टर शर्मा इस तो पहला उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री वजो सेवा निभा चुके हैं। उन्होंने राज्यसभा का कार्यकाल 25 नवंबर को खत्म होना सी। बीती देर रात जारी राष्ट्रपति भवन के एक बयान में कहा गया कि डॉक्टर शर्मा की नियुक्ति उस तरीक तो लागू होगी जदों वह अपना अहुदा संभालणगे। नेपाल में आए तबाहकुन हड़ां में मरण वाले की गिनती 1344 हो गई है। 590 विदेशी नागरिकों समेत लगभग 5000 लोग हाल भी लापता ने। हुण तक 13100 तो वध लोगों को बचाया गया है। नुवाकोट जिले में 10 दिन तक चिक्कड़ ते मलबे हेठ दबी रहने तो बाद एक 60 साला औरत को बचाया गया है। मृतकों की पछाण करने लिए कई मामलों में DNA टेस्टिंग की वरतों की जा रही है। नेपाल पुलिस की वैबसाइट से 12,270 अणपछातियां लाशों के वेरफे भी प्रकाशित किए गए हैं ताकि लोगों को

0: चीन की जोड़ी के साथ खेल रही है। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने नौजवान भारतीयों पर जोर दिया है कि वो बड़े ख्वाब देखें और आगे आकर कमान संभालें। जनाब मोदी ने कहा कि अगर भारत के बासलाहियत अफराद दुनिया की सरकर्दा कंपनियों की क्यादत कर सकते हैं तो फिर भारतीय इदारे भी दुनिया की क्यादत कर सकते हैं। वजीर आजम ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स SRCC की सदसाला तकरीबात से खिताब करते हुए ये बात कही। 21वीं सदी के नौजवानों के उमंगों से भरपूर जज्बे की हौसला अफजाई करते हुए वजीर आजम ने यूनिकॉर्न्स बनाने, ड्रोन तकनीक में इख्तरा और जदीद तर्ज के AI हल निकालने में नौजवानों के अहम रोल को सराहा। जनाब मोदी ने नौजवानों पर जोर दिया कि वो साबिका नस्लों से भी कहीं ज्यादा बड़े ख्वाबों की तकमील के लिए काम करें। उन्होंने उनसे ऐसी आलमी मुशावरती, अकाउंटिंग, मालियाती और कानूनी उमूर की फर्म्स बनाने के लिए कहा जो दुनिया की क्यादत करने की सलाहियत रखती हों।
1: हम गर्व से कहते हैं कि आज भारतीय दुनिया की टॉप कंपनीज को लीड कर रहे हैं। अगर भारतीय दुनिया की टॉप कंपनियों को लीड कर रहे हैं तो भारतीयों की बनाई कंपनियां दुनिया को क्यों लीड न करें।
0: वजीर आजम ने इस बात को भी उजागर किया कि दुनिया अब भारत की वलवला अंगेज और मुतहर्रिक पॉलिसी नीज सबसे तेज रफ्तार तरक्की करने वाली बड़ी मईशत के उस रुतबे की सताइश कर रही है। जनाब मोदी ने जोर देकर कहा कि मगरबी एशिया के खित्ते में लड़ाई और आलमी सतह पर तजारती रुकावटों के तनाजुर में 7.8% की सहमाही शरह तरक्की से भारत की मजबूत सलाहियत की अक्कासी होती है।
1: जो दुनिया तब भारत में पॉलिसी पैरालिसिस से चिंतित थी वो दुनिया आज भारत के पॉलिसी डायनामिज्म की चर्चा कर रही है। तब दुनिया भारत को फ्रजाइल फाइव बता रही थी, आज दुनिया भारत को फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी बनते हुए देख रही है। अभी हफ्ते भर में ही भारत की इकोनॉमी को लेकर कई सारी पॉजिटिव खबरें आई। 7.8% क्वार्टरली ग्रोथ ने देश का जोश बढ़ाया है।
0: वजीर आजम ने मुल्क को बड़े पैमाने पर सामान दरामद करने वाले मुल्क के बजाय एक सरकर्दा बरामदकार मुल्क बनने में मेक इन इंडिया पहल की कामयाबी का भी तذکرہ किया। अपने खिताब में जनाब मोदी ने बताया कि स्मार्टफोन की बरामदात 2.5 लाख करोड़ रुपए से तजावुज कर गई है, जबकि अंदरून मुल्क दिफाई सामान की तैयारी तकरीबन 2 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गई है, जो कि अब तक की सबसे ज्यादा है। भारत ने मसावी इलाके पर मुश्तमिल आलमी नक्शे के बारे में अक्वामे मुत्तहिदा की करारदाद की हिमायत की है और ये बात दोहराई है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख को भारत के सरकारी नक्शे के मुताबिक दिखाया जाना चाहिए, क्योंकि इक्तदारे आला और इलाकाई सालमियत पर कोई समझौता नहीं हो सकता। अक्वामे मुत्तहिदा की जनरल असेंबली की मुतालिका करारदाद पर वजारत खारजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने यह वजाहत की है कि नक्शे में किसी इलाके को गलत या गुमराहकुन तरीके से दिखाना नाकाबिले कबूल है। उन्होंने कहा कि भारत के इक्तदारे आला और इलाकाई सालमियत के बारे में सरकार का मौकफ बिल्कुल वाज़ह है और पायदार है और इस बारे में कोई समझौता नहीं हो सकता। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। मध्य प्रदेश के सागर जिले में मुश्तबह नकली शराब पीने के बाद 10 अफराद की मौत हो गई। मुख्तलिफ अस्पतालों में 10 से ज्यादा अफराद जेरे इलाज हैं। मजीद तफसील हमारे नामनिगार से।
2: रियासत में सागर जिले की बांडा तहसील में मुश्तबा नकली शराब पीने के बाद 10 अफराद की मौत होने की खबर है। सागर जिले के चीफ मेडिकल हेल्थ अफसर देवेश प्रत्यारिया ने यह जानकारी दी है। मालूम हुआ है कि मरने वाले बराज गांव के रहने वाले थे। पुलिस और इंतजामिया की टीमें इस वाकये के बाद वहां पहुंच गई हैं। सागर के SP समेत आला एहलकारों ने उस मकाम का मुआयना किया। पुलिस इस पूरे मामले और इस बात की छानबीन कर रही है कि यह शराब कहां से आई थी। तहकीकात और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट्स आने के बाद ही मौत की असल वजूहात वाजे हो सकेंगी। भोपाल से अभिनव गोयल की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं शमीम इरफान।
0: उत्तर प्रदेश में मूसलाधार बारिश होने और बैराजों से पानी छोड़े जाने की वजह से रियासत के 24 जिले सैलाब से मुतासिर हैं। वजीर आला योगी आदित्यनाथ सैलाब की सूरत

0: हाल और बचाव कार्रवाइयों का जायजा लेने के लिए चित्रकूट जिले में मौजूद हैं। पेश है एक रिपोर्ट।
1: रियासत के कई दरिया अब भी तोगियानी पर हैं। बदायूं, गाजीपुर और बलिया में दरियाए गंगा खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है, जबकि फर्रुखाबाद में ये खतरे के निशान के करीब पहुंच गया है। लखीमपुर खेड़ी और बाराबंकी में शारदा, अयोध्या और तुर्तीपुर में घाघरा में भी पानी खतरे के निशान से ऊपर चला गया है। चित्रकूट में दरिया यमुना में पानी की सतह मुसलसल बढ़ रही है। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने कल वाराणसी में वरुणा नदी के सैलाब से मुतासर इलाकों का हेलीकॉप्टर से जायजा लिया। उन्होंने एक राहत कैंप का दौरा करके मुतासरीन से उनका हाल जाना और राहत सामान तकसीम किया। दूसरी जानिब महकमे मौसमियात ने अगले चार दिन के दौरान रियासत के शुमाली हिस्से और अगले दो दिन के दौरान मगरबी जिलों में शदीद बारिश की वार्निंग जारी की है। लखनऊ से सुशील चंद्र तिवारी की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं कौनैन हैदर।
0: भारतीय मौसमियात महकमे ने हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में आज तेज बारिश होने की पेशगोई की है। इधर कौमी राजधानी दिल्ली में आज दूसरे दिन भी औसत से लेकर शदीद बारिश का सिलसिला जारी है, जिससे शहर के कई इलाकों में पानी भर जाने और ट्रैफिक की आमदोरफ्त पर असर पड़ने की इत्तला मिली है। बिहार, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, मगरबी बंगाल और शुमाल मशरकी भारत के बाज़ हिस्सों में कल तक इसी तरह का मौसम रहने का इम्कान है। ईरान के मगरबी हिस्से में एक ईंधन टैंकर में धमाका होने से 11 अफराद की मौत हो गई, जबकि 7 जख्मी हो गए। ईरान में कुर्द शहर सनंदज के नजदीक ट्रैफिक पुलिस स्टेशन के करीब कई कारों से टकराने के बाद यह टैंकर आग के शोलों में घिर गया। सनंदज राजधानी तेहरान के कोई 400 किलोमीटर मगरिब में वाक़ है। इत्तलात के मुताबिक ब्रेक निज़ाम में खराबी की वजह से यह वाक़या पेश आया। जख्मियों को अस्पताल में दाखिल करा दिया गया है। ईरान की सिपाही पासदारा ने इनकलाब IRGC की बहरी फोर्स ने दावा किया है कि उसने आबनाए हुरमुज में गैर मजाज करार दिए गए रास्ते से गुजरने वाले 3 तेल बरदार बहरी जहाजों को निशाना बनाया है। इसके अलावा उसने 3 ऐसे बहरी जहाजों को भी निशाना बनाया है जो मुबैना तौर पर अमरीका से वाबस्ता थे। बैडमिंटन में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की भारतीय जोड़ी तीसरी मर्तबा चाइना मास्टर्स के डबल्स के फाइनल में खेल रही है। आलमी नंबर 5 जोड़ी का मुकाबला हे जी तिंग और रेन शियांग यू की चीन की जोड़ी से हो रहा है। खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत की इक्तसादी कुवत और वलवला अंगेज पॉलिसी की बदौलत मुल्क विकसित भारत की समत गामजन है। वजीर आजम ने भारतीय कंपनियों से जोर देकर कहा कि वो दुनिया की क्यादत के लिए आगे आएं। भारत ने मसावी इलाके पर मुश्तमिल आलमी नक्शे के बारे में अकवाम मुत्तहिदा की करारदाद की हिमायत की है और ये बात दोहराई है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख को भारत के सरकारी नक्शे के मुताबिक दिखाया जाना चाहिए, क्योंकि इकतदार आला और इलाकाई सालमियत पर कोई समझौता नहीं हो सकता। मध्य प्रदेश के सागर जिले में मुश्तबह नकली शराब पीने के बाद 10 अफराद की मौत हो गई, जबकि कई लोगों को अस्पताल में दाखिल कराया गया है। ईरान ने आबनाए हुरमुज में 3 अमरीकी टैंकरों और बहरी जहाजों पर हमला किया है। बिहार और उत्तर प्रदेश में शदीद बारिश के बाद सैलाब की सूरत हाल मजीद खराब हो गई है और बैडमिंटन में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की भारतीय जोड़ी चाइना मास्टर्स टूर्नामेंट के मर्दों के डबल्स के फाइनल में चीन की जोड़ी के साथ खेल रही है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
2: गुड आफ्टरनून।
3: खबरों तो बाद एक बार फिर स्वागत है जी। प्रोग्राम चल रहा है फौजी वीरां लई। इस दे नाल ही सुनदे आज दे प्रोग्राम दा अगला गीत उदित नारायण की आवाज़ में।

0: ਅਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਦੁਪਹਿਰ ਸਮਾਚਾਰ ਸਾਡੇ ਦਿੱਲੀ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं निखिल कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत की आर्थिक क्षमता और नीतिगत गतिशीलता देश को विकसित राष्ट्र की ओर ले जा रही है। भारतीय कंपनियों से वैश्विक नेतृत्व का आह्वान किया। भारत ने समान क्षेत्रफल वाले विश्व मानचित्र को अपनाने के संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव का समर्थन किया। जम्मू कश्मीर और लद्दाख को भारतीय मानचित्र के अनुसार दर्शाने की बात दोहराई। कहा, संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता से कोई समझौता नहीं। मध्य प्रदेश के सागर जिले में जहरीली शराब से 10 लोगों की मौत, कई अस्पताल में भर्ती। ईरान ने होर्मुज जल डमरू मध्य में अमेरिका के 3 टैंकरों और जहाजों पर हमला किया। तेज बारिश के बाद बिहार और उत्तर प्रदेश में बाढ़ की स्थिति गंभीर हुई। हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब तथा उत्तर प्रदेश में मूसलाधार बारिश का अनुमान। और चाइना मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के खिताबी मुकाबले में आज सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी का सामना चीन के हे जी किंग और रेन यांग यू से।

0: अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं से बड़े सपने देखने और दुनिया का नेतृत्व करने का आह्वान किया है। वे कल दिल्ली विश्वविद्यालय के श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के शताब्दी समारोह को संबोधित कर रहे थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि जब भारत के लोग दुनिया की बड़ी कंपनियों का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं तो भारतीय कंपनियां भी दुनिया का नेतृत्व कर सकती हैं। उन्होंने युवाओं से यूनिकॉर्न बनाने, ड्रोन तकनीक में नवाचार करने और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में आगे बढ़ने का आह्वान किया।
1: भारत की ग्लोबल कंसल्टिंग फर्म्स क्यों नहीं हो सकती? हमारी अकाउंटिंग फर्म, हमारी लीगल फर्म, हमारी फाइनेंशियल फर्म, ये सब ग्लोबल लीडर्स क्यों नहीं बन सकती? हम गर्व से कहते हैं कि आज भारतीय दुनिया की टॉप कंपनीज को लीड कर रहे हैं। अगर भारतीय दुनिया की टॉप कंपनियों को लीड कर रहे हैं तो भारतीयों की बनाई कंपनियां दुनिया को क्यों लीड न करें?
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि आज दुनिया भारत की तेज आर्थिक वृद्धि और नीतिगत बदलावों की सराहना कर रही है। उन्होंने कहा कि वैश्विक चुनौतियों के बावजूद भारत की 7.8% की तिमाही आर्थिक वृद्धि देश की क्षमताओं को दर्शाती है।
1: जो दुनिया तब भारत में पॉलिसी पैरालिसिस से चिंतित थी, वो दुनिया आज भारत के पॉलिसी डायनामिज्म की चर्चा कर रही है। तब दुनिया भारत को फ्रजाइल फाइव बता रही थी, आज दुनिया भारत को फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी बनते हुए देख रही है। अभी हफ्ते भर में ही भारत की इकोनॉमी को लेकर कई सारी पॉजिटिव खबरें आई। 7.8% क्वार्टरली ग्रोथ ने देश का जोश बढ़ाया है।
0: श्री मोदी ने मेक इन इंडिया की सफलता का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि भारत अब प्रमुख निर्यातक राष्ट्र बन रहा है। स्मार्टफोन का निर्यात 2,50,000 करोड़ रुपए से ज्यादा हो गया है, जबकि देश का रक्षा उत्पादन करीब 2,00,000 करोड़ रुपए के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुका है। प्रधानमंत्री ने देश में तेजी से हो रहे बुनियादी ढांचे के विकास का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि जिन परियोजनाओं को पूरा होने में पहले दशकों लगते थे, वे अब कुछ ही वर्षों में पूरी हो रही हैं। उन्होंने रेलवे के विद्युतीकरण का उदाहरण देते हुए कहा कि वर्ष 2014 तक 30% से भी कम रेल लाइनों का विद्युतीकरण हुआ था, जबकि पिछले 12 वर्षों में लगभग 100% रेलवे विद्युतीकरण किया गया है। गृहमंत्री अमित शाह 3 दिवसीय गोवा दौरे पर हैं। वे कल रात गोवा पहुंचे। हमारे संवाददाता ने बताया कि श्री शाह आज कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे।
2: अमित शाह ने आज मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत के साथ गोवा से जुड़े अहम मुद्दों पर समीक्षा बैठक की। इसके बाद वे जल्द ही मीडिया से बातचीत करेंगे और प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे। अमित शाह आज बीजेपी के नए प्रदेश कार्यालय अटल भवन का उद्घाटन भी करेंगे। वे पार्टी की स्टेट कोर कमेटी के सदस्यों से भी मुलाकात करेंगे। कल 28वें वेस्टर्न जोनल काउंसिल मीटिंग की बैठक में शामिल होंगे और गोवा पुलिस को राष्ट्रपति का पुलिस कलर प्रदान करेंगे। निखिल उपाध्याय, आकाशवाणी समाचार, पणजी।
0: मध्य प्रदेश के सागर जिले में जहरीली शराब पीने से 10 लोगों की मौत हो गई है, जबकि करीब 35 लोगों का अस्पताल में उपचार चल रहा है। इनमें कुछ की हालत गंभीर है। ये मामला बांदा थाना क्षेत्र के नौरोजा और घुघरा खुर्द गांवों का है। शुरुआती जांच में शराब में मिथाइल अल्कोहल होने की आशंका जताई गई है। कुछ लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात कही है। ये समाचार हमारी न्यूज ऑन EIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsoneir.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
3: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए। expert@airnewshindi को फॉलो करें और PB शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने।
0: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। विदेश मंत्रालय ने समान क्षेत्रफल वाले विश्व मानचित्र को लेकर भारत का रुख स्पष्ट किया है। मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में समान क्षेत्रफल वाले मानचित्र से जुड़े प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया है। उन्होंने कहा कि भारत के संप्रभु क्षेत्र, जिसमें जम्मू कश्मीर और लद्दाख भी शामिल है, उन्हें भारत के आधिकारिक मानचित्र के अनुसार ही दिखाया जाना चाहिए। किसी भी गलत या भ्रामक चित्रण को भारत स्वीकार नहीं करेगा। श्री जायसवाल ने कहा कि भारत की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता को लेकर सरकार का रुख स्पष्ट तथा अडिग है। उन्होंने यह भी कहा कि यह प्रस्ताव किसी खास मान

चित्र, प्रक्षेपण या किसी देश की सीमा के चित्रण का समर्थन नहीं करता। हॉर्मुज जल डमरू मध्य के आसपास अमेरिका ईरान संघर्ष में इस सप्ताह एक बार फिर तनाव बढ़ गया है। दोनों पक्षों ने हॉर्मुज जल डमरू मध्य और उसके आसपास जहाजों पर हमले किए हैं। कल के ताजा घटनाक्रम में अमेरिका की केंद्रीय कमान सेंटकॉम ने कहा कि उसने ईरान के 3 तेल टैंकरों को निष्क्रिय कर दिया है। इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने भी दावा किया है कि उसकी नौसेना ने हॉर्मुज जल डमरू मध्य के संरक्षित क्षेत्र में घुसने का प्रयास कर रही रिमोट से संचालित अमेरिका की एक नाव को निशाना बनाया है। अमेरिका के दूत आज यूक्रेन की राजधानी कीव पहुंचेंगे। शांति प्रक्रिया के तहत अमेरिकी दूतों की यह यूक्रेन की पहली यात्रा है। इससे पहले रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कल क्रेमलिन में अमेरिकी दूतों स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुश्नर से मुलाकात की थी। बातचीत के बाद राष्ट्रपति पुतिन ने कीव पर रूसी हमलों को 3 दिन के लिए रोकने का आदेश दिया। उधर यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन

0: रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कल क्रेमलिन में अमरीकी दूतों स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुश्नर से मुलाकात की थी। बातचीत के बाद राष्ट्रपति पुतिन ने कीव पर रूसी हमलों को 3 दिन के लिए रोकने का आदेश दिया। उधर यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन भी सोमवार तक मॉस्को पर हमले रोकने के लिए तैयार है। नेपाल में अचानक आई विनाशकारी बाढ़ में मृतकों की संख्या 1344 हो गई है। 590 विदेशी नागरिकों सहित लगभग 5000 लोग अभी भी लापता हैं। अब तक 13100 से अधिक लोगों को बचाया जा चुका है। मृतकों की पहचान के लिए डीएनए परीक्षण की सहायता ली जा रही है। 1270 अज्ञात शवों का विवरण नेपाल पुलिस की वेबसाइट पर दिया गया है। भारत और चीन की टीमों की सहायता से कई पनबिजली परियोजनाओं में बचाव अभियान अब भी जारी है। उधर चीन के चियांगशी प्रांत में तेज बारिश के बाद भूस्खलन में 2 लोगों की मौत हो गई। तूफान सॉडेल से कई दिन की मूसलाधार बारिश के कारण यह दुर्घटना हुई है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
1: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी xper@AIRNewsHindi और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।
0: ये आकाशवाणी है। उत्तर प्रदेश में तेज बारिश और बैराजों से पानी छोड़े जाने के कारण 24 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। हमारे संवाददाता ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज चित्रकूट जिले में स्थिति और राहत बचाव कार्यों का जायजा लिया।
2: राज्य की कई नदियां अभी भी उफान पर हैं। बदायूं, गाजीपुर और बलिया में गंगा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है और फरुखाबाद में खतरे के निशान के नजदीक पहुंच गई है। वहीं लखीमपुर खीरी और बाराबंकी में शारदा तथा अयोध्या और तुर्तीपार बलिया में घाघरा नदी का जलस्तर भी खतरे के निशान के पार पहुँच गया है। चित्रकूट के राजापुर में यमुना नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल वाराणसी में वरुणा नदी के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया। इस दौरान उन्होंने बाढ़ राहत शिविर में पहुंचकर पीड़ितों से मुलाकात की और राहत सामग्री बांटी। उधर मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों तक प्रदेश के पूर्वी हिस्से और आगामी 2 दिनों तक पश्चिमी जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: बिहार के कई हिस्सों में भी बाढ़ के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त है। इस बीच मौसम विभाग ने आज हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। बिहार, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में कल तक बारिश की आशंका है। वहीं दिल्ली में भी लगातार दूसरे दिन बारिश हो रही है। इसके चलते कई इलाकों में जलभराव और ट्रैफिक की रफ्तार धीमी हो गई है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर, झारखंड और छत्तीसगढ़ में कल बिजली गिरने की भी संभावना है। नई दिल्ली में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की तैयारियां तेज हो गई हैं। यह विशेष सम्मेलन 12 और 13 सितंबर को भारत मंडपम में आयोजित होगा। हमारे संवाददाता ने बताया कि आयोजन की सुरक्षा तैयारियों के अंतर्गत आज सुबह दिल्ली पुलिस ने मोटर काफिले की रिहर्सल की और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया।
3: ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के मद्देनजर एनडीएमसी क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था को और भी मजबूत किया जा रहा है। दिल्ली पुलिस के अनुसार यमुना नदी के किनारे सुरक्षा उपायों की भी समीक्षा की गई है। इस बीच एनडीएमसी नई दिल्ली के प्रमुख इलाकों में सौंदर्यकरण और सड़कों के स्वरूप में सुधार से जुड़े कार्य कर रही है। 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन ब्रिक्स के सदस्य और साझेदार देशों के नेताओं, आउटरीच देशों तथा विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रमुखों को एक मंच पर एकत्रित करेगा। समर्थ के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: हमारे संवाददाता ने बताया कि ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से इतर आई ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का भी आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम में वित्त मंत्री और 500 से अधिक संस्थागत निवेशक तथा उद्योगपति शामिल होंगे। आई ब्रिक्स का उद्देश्य ब्रिक्स के 21 सदस्य और साझेदार देशों में संप्रभु पूंजी का उपयोग, विश्वसनीय बुनियादी ढांचे, ऊर्जा तथा डिजिटल क्षमता परियोजनाओं के लिए करना है।
4: सम्मेलन में सीमा पार निवेश, गैर डॉलर निपटान और भुगतान प्रणालियों पर चर्चा होगी। इसके अलावा भारत की यूपीआई भुगतान प्रणाली और ब्राजील की पिक्स भुगतान प्रणालियों को जोड़ने तथा डिजिटल मुद्राओं में कारोबार पर भी चर्चा होने की संभावना है। ये शिखर सम्मेलन ऐसे समय में हो रहा है जब ब्रिक्स देश व्यापार गतिशीलता, अमरीकी शुल्क के दबाव और उच्च डॉलर लागत के समाधान के लिए स्वयं को अनुकूलित कर रहे हैं। भारत की अध्यक्षता में 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन नई दिल्ली के भारत मंडपम में होगा। समाचार कक्ष से फरहत नाज।
0: भारतीय वायुसेना की सारंग हेलीकॉप्टर डिस्प्ले टीम दूसरे अल अलामीन अंतर्राष्ट्रीय

0: एयर शो में भाग लेने के लिए मिस्र पहुंच चुकी हैं। ये एयर शो 8 से 10 सितंबर तक अल अलामीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर आयोजित किया जाएगा। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि टीम सुनियोजित प्रदर्शनों की श्रृंखला के माध्यम से सटीकता, पेशेवर अंदाज और उड़ान कौशल का प्रदर्शन करेगी। मंत्रालय ने यह भी बताया कि सारंग टीम देश में ही डिजाइन और निर्मित उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर ध्रुव का संचालन करेगी। डॉक्टर दिनेश शर्मा को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है। डॉक्टर शर्मा फिलहाल उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के सांसद हैं और वे राज्य के उप मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। डॉक्टर शर्मा ने कहा कि वे अपनी नई जिम्मेदारी को पूरी ईमानदारी के साथ निभाएंगे।
1: जो निर्देश होगा जो भी प्रधानमंत्री जी का वो सबको स्वीकार है और हमेशा मैं एक कार्यकर्ता की तरह रहा हूँ, तो जो भी हमारे पार्टी का नेतृत्व आदेश देता है वो सिद्ध करना हमारा काम है। जो प्रधानमंत्री जी का विश्वास है उसको पूरा करूँ, यही मेरी इच्छा है।
0: आंध्र प्रदेश सरकार ने राज्य में शहरी स्थानीय निकायों के साधारण चुनाव कराने के लिए संवैधानिक नियम जारी किए हैं। ये नियम महापौर, अध्यक्षों और वार्ड सदस्यों के प्रत्यक्ष चुनाव के साथ साथ उप महापौर और उपाध्यक्षों के अप्रत्यक्ष चुनाव के लिए बनाए गए हैं। संशोधित कानूनों के तहत नगर निगमों के महापौर और नगर पालिकाओं तथा नगर पंचायतों के अध्यक्षों का चुनाव मतदाताओं द्वारा प्रत्यक्ष तौर पर किया जाएगा। सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी तीसरी बार चाइना मास्टर्स बैडमिंटन प्रतियोगिता के फाइनल में पहुंच गए हैं। भारतीय जोड़ी का मुकाबला चीन के हे जीटिंग और रेन जियांग यू से होगा। विश्व के पांचवें नंबर की भारतीय जोड़ी ने सेमीफाइनल में मलेशिया के नूर मोहम्मद, अजरियन अयूब और टेन वी कियोंग को पराजित किया था। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत की आर्थिक क्षमता और नीतिगत गतिशीलता देश को विकसित राष्ट्र की ओर ले जा रही है। भारतीय कंपनियों से वैश्विक नेतृत्व करने का आह्वान किया। भारत ने समान क्षेत्रफल वाले विश्व मानचित्र को अपनाने के संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव का समर्थन किया। जम्मू कश्मीर और लद्दाख को भारतीय मानचित्र के अनुसार दर्शाने की बात दोहराई। कहा, संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता से कोई समझौता नहीं। मध्य प्रदेश के सागर जिले में जहरीली शराब से 10 लोगों की मौत, कई अस्पताल में भर्ती। ईरान ने होर्मुज जलडमरू मध्य में अमरीका के 3 टैंकरों और जहाजों पर हमला किया। और चाइना मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के खिताबी मुकाबले में आज सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी का सामना चीन के हे जीटिंग और रेन जियांग यू से। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलो हर्ट्ज से असी आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। दोपहर दे 2:30 हो रहे ने। हुण पेश है जी प्रोग्राम रंगली धरती। अज दे इस प्रोग्राम विच आओ सुनदे हां कुलदीप सिंह बालोकी कविशर ते उना दे साथियां दी आवाज विच कविश्री।
3: धन गुरु नानक देव जी महाराज जी दे आगमन पुरब दे समय नूं मुख रखदिआं होइआं भाई गुरदास जी फरमान करदे ने, सतगुर नानक प्रगटिआ मिट्टी धुंद जग चानण होआ, ज्यों कर सूरज निकलिआ तारे छपे अंधेर पलोआ, सिंघ बुके मिरगावली भन्नी डाए ना धीर धरोआ, जिथे बाबा पैर तरे पूजा आसन थापण सोआ, सिद्ध आसन सब जगत दे नानक आद मते जो कोआ, घर घर अंदर धर्मसाल होवे कीर्तन सदा वसोआ, बाबे तारे चार चक नौ खंड पृथ्वी सच्चा ढोआ, गुरमुख कल विच प्रगट होआ, इतिहास दे इस सच तो इनकार नहीं कीता जा सकता। जदों जदों भी दुनिया दे तख्ते ते जुल्म ने अत चुकी, इस अत दा अंत करन लई अगमी आत्मा इस संसार उत्ते आई, इस अत दा अंत कर दिता है। शायर कहिंदा रहे विलक दे नित मजलूम लखां, पर ना जुल्म विच खड़ोत आई, अगमी आत्मा इस संसार उत्ते होके प्यार विच ओत पोत आई, भी सच्चा मार्ग दर्शाउणा है जिंदगी दा, लैके ऐसी प्रेरणा स्रोत आई, फैल गया तरलोकी दे विच चानण जद ननकाणे विच रब दी जोत आई, धरती उना सुनहरी पलां नूं भुल नहीं सकदी जदों इस नमाणी दी झोली अकाल पुरख ने सदरां नाल भर दित्ती। 1469

0: तू ता सकया जान नहीं।
1: अग पाप दी सड़दी दुनिया करनी इस सखाली है, सारी दुनिया पूजू इसनू ए दुखिया दा वाली है।
0: अज तो अगे नेक पुत्र नू उल्टी गल कोई आखी ना, दिल दे विच क्रोध ले आके

0: ने केड़ी गल सखाली सारी दुनिया पूजू इसनू ए दुखिया दा वाली
1: ऐसा इसदा तेज चमकदा लोका नू समझाऊगा चोरा ताई साध बना के सिद्धे रास्ते पाऊगा
0: दुखिया ते मजलू मावारी करनी इस रखवाली सारी दुनिया पूजू इसनू ए दुखिया दा वाली
1: पंडित ने समझौन वास्ते छड़ी कोई कसर नहीं पर कालू तई किसे गल दा होया कोई असर नहीं
0: नानक जी दिया सिवता सुन के चढ़ी गुस्से विच लाली सारी दुनिया पूजू इसनू ए दुखिया दा वाली

अंधे दिलो अकलो काने कर दे कलंकत बाने कपटी मन सारे दा मलका ए ब्रह्म भोज नहीं खूना दखे।

0: साइबर फ्रॉड या धोखाधड़ी की जानकारी लई 1930 हेल्पलाइन नंबर डायल करो जां www.cybercrime.gov.in ते शिकायत दर्ज करवाओ।
1: हुणे तुसी सुन रहे सी प्रोग्राम रंगली धरती। अज दे इस प्रोग्राम विच तुसी कुलदीप सिंह बालोकी कविशर ते इना दी साथियां पासों कविश्री सुन रहे सी। आकाशवाणी दा ए जलंधर केंद्र है। साड़ी इस सभा दे प्रोग्राम हुण समाप्त हुंदे ने। अगली सभा दे प्रोग्राम लैके शाम 4 बजे फिर तुहाडी सेवा च हाजिर होवांगे। DTH दी आकाशवाणी दी पंजाब सेवा राही तुसी हुण सुन सकदे हो प्रोग्राम चिट्ठियां मिठियां। तद तक लई सानू इजाजत दिओ।

दृष्टिकोण रख्या। पंजाब विच वोटर सूचियां दी चल रही विशेष गहन सोध SIR 2026 तहत आज जलंधर दे सारे 1997 वोट केंद्रां ते विशेष कैंप लाए जा रहे ने। श्री गुरु रविदास महाराज जी दे 650वें प्रकाश पुरब नूं समर्पित शानदार ड्रोन शो अज शाम 6 बजे स्थानक लायलपुर खालसा कॉलेज जलंधर विखे कराया जा रहा है। मौसम विभाग ने अज पंजाब हरियाणा अते चंडीगढ़ विच भारी मीह पैण दी पेशीनगोई कीती है। सन हुण तक दियां मुख सुर्खियां। DTH दी आकाशवाणी पंजाब सेवा दा ए जलंधर केंद्र है। हुण तुसी सुनोगे साडा रोजाना प्रोग्राम चिट्ठियां मिठियां। स्वागत। प्रोग्राम चिट्ठियां मिठियां सुन रहे सारे ही श्रोतियां दा तहे दिल तों निघा स्वागत करदे हां। दोस्तों, इस प्रोग्राम दे विच असीं तुहानूं सुणांदे हां तुहाडे मनपसंद पंजाबी फरमाइशी गीत, जो कि तुसीं सानूं चिट्ठियां दे विच लिख के भेजदे हो, ते नाल ही असीं तुहाडे नाम भी प्रोग्राम दे विच शामिल करदे हां। आओ सुणदे हां प्रोग्राम दा पहला गीत हरभजन मान ते जसपिंदर नरूला दी आवाज़ दे विच।

महेश गर्ग, सुषमा गर्ग ते जशन गर्ग। आओ दोस्तों इन सारे दी मिली जुली फरमाइश दे उत्ते सुनते हाँ प्रोग्राम दा अगला गीत कंठ कलेर दी आवाज दे विच।

पिंड इस्लामावाला, जिला फाजिलका तो ने सोहन लाल, ओम प्रकाश, शगन लाल, हनू, लवकुश, अमनदीप, कंचन, विक्रम, कुलदीप, बाबू सिंह, छत्रपाल सिंह, गुरमीत सिंह, बोट सिंह, रंजीत कौर ते काका। मसीता डब्बा वाली तो ने दर्शन, सरगुन, इंद्रजीत, कमलजीत, मीनाक्षी, सागर ते हनीलोट। प्रिमलागंज आलोट जिला रतलाम मध्य प्रदेश तो ने बलवंत कुमार वर्मा, राजू भाई माया वर्मा, शोभा वर्मा, राहुल, ज्योति, अतुल, पायल, प्रियांश ते ऋषि वर्मा। सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ तो ने टी डी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह ठाकुर, डॉक्टर अमनदीप। कालका तो ने शुभ चंद्र बजाज, साहिल ते पिट्टा बजाज। आओ दोस्तों ने सारे दी मिली जुली फरमाइश दे ते सुन दे हां प्रोग्राम दा अगला गीत फिरोज खान ते मनप्रीत अख्तर ते आवाज दे विच।

पिंडा जुम्बाला तहसील फाजिलका तुने सोहन सिंह बुक निशान सिंह बुक सीरत कार कीरत कार ते जसवंत कार मोहम्मदपुर सोतर टानी रतिया तुने जीवन शंटी सिमरन कौशल्या रानी गुरशिंदर बब्बू कुलदीप कीरत भूषण खेड़ा जशन ते सारा उन्हों का परिवार पटेल नगर मलोट पंजाब तुने डॉक्टर

रमेश कुमार जजोरिया, गीतारानी जजोरिया, गगनदीप जजोरिया ते बेबी आरजू जजोरिया। आरायण तो ने डॉक्टर बनवारी जयपाल, बिमला जयपाल, सोनू जयपाल, ममता जयपाल, मोक्ष, दिशा, सुशांत ते विक्रम जयपाल। आओ दोस्तों, इन्हां सारयां दी मिली जुली फरमाइश दे उत्ते सुनदे हां प्रोग्राम दा अगला गीत अमरिंदर गिल दी आवाज।

ब्रजला चौहान ते नीरज कुमार चौहान। आजाद नगर लक्सर हरिद्वार तो ने ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही ते मेहराज जहां। हाजीपुर तो ने विजय, पूजा ते अलीसा। टालीवाला चट्टा तो ने साहिब सिंह, सुखजीत कौर, बलविंदर, हरजिंदर। गिद्दड़बाहा तो ने मनजीत ते परवीन तनेजा। आओ दोस्तों, इन्हां सारिया दी मिली जुली फरमाइश दे उत्ते सुनदे हां प्रोग्राम दा अगला गीत जैजी बी दी आवाज़ दे विच।

दोस्तों प्रोग्राम चिट्ठियां मिठियां नूं इसे गीत नाल एथे ही समाप्त करते हैं। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि तुसी इस प्रोग्राम दे विच बहुत ही खूबसूरत गीतां दा आनंद माणिया होएगा ते तुहाडियां सी फरमाइशां पूरी करन दी तहे दिल तों कोशिश कीती है। सो दोस्तों इस प्रोग्राम नूं समाप्त करते हैं। डीटीएच दी आकाशवाणी पंजाब सेवा दा ये जलंधर केंद्र है। हुण तो कुछ ही पलों बाद तुसी सुनोगे साडा अगला प्रसारण साडे प्राइमरी चैनल तों।

मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 864 किलोहर्ट्ज़, एफएम 100.8 मेगाहर्ट्ज़, एफएम 100.9 मेगाहर्ट्ज़ ते एफएम 103.6 मेगाहर्ट्ज़ आकाशवाणी अमृतसर अते डीटीएच दी आकाशवाणी पंजाब सेवा दा जलंधर केंद्र है। शाम दे 4 बज रहे ने, साडी दूसरी सभा हुण शुरू हुंदी है। सभा दे शुरू विच आओ सुणदे हां हुण तक दे मुख समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि दुनिया भारत की नीति गतिशीलता और सब तो तेजी नाल वध रही वड्डी आर्थिकता वजों शलाघा कर रही है। मध्य प्रदेश के सागर जिले में जहरीली शराब पीने नाल घट्टो घट 10 लोगों की मौत हो गई है। बीजेपी के राज्यसभा मैंबर दिनेश शर्मा को अंडमान और निकोबार का उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है। नेपाल में आए हड़ां में मरण वालों की गिनती 1344 तो हो गई है। 590 विदेशी नागरिकों समेत लगभग 5000 लोग हालां भी लापता नहीं। पंजाबी मंत्रिमंडल ने मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की अगवाई में हुई मीटिंग च आने वाली सौनी मंडीकरण रुत 2026-27 दौरान झोने की सुचारू और निर्विघन खरीद और आवाजाई को यकीनी बनाने लई 3 मुखी नीतियां प्रवानगी दे दिती है। खेडां वतन पंजाब दियां 2026 दा चौथा सीजन कल बठिंडा दे शहीद भगत सिंह स्टेडियम विखे शुरू होया। इस मौके पंजाब दे मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने पंजाब दे खेड हुनर नूं विश्व पद्धर ते लिजाण दा एक उद्देश पूर्ण दृष्टिकोण रख्या। पंजाब विच वोट सूचियां दी चल रही विशेष गहन सोध SIR 2026 तहत अज जलंधर दे सारे 1997 वोट केंद्रां ते विशेष कैंप लाए जा रहे ने। श्री गुरु रविदास महाराज जी दे 650 प्रकाश पुरब नूं समर्पित शानदार ड्रोन शो अज शाम 6 बजे स्थानक लायलपुर खालसा कॉलेज विखे करवाया जा रहा है। मौसम विभाग ने अज पंजाब हरियाणा ते चंडीगढ़ विच भारी मीह पैण दी पेशनगोई कीती है।

गर्ल्स हॉस्टल कविता जिहड़ी आ ओह ऐसी कविता है कि जिहड़ी बहुत देर तो मेरे अंदर सी पर मैनूं पता नहीं सी कि कविता मैं लिखनी है पर ओह लिखी गई। लिखण तो बाद मैनूं समझ आया, मतलब मैं अपनी कविता पूरी कविता पिछली कविता भी जिहड़ी इस तो पहला लिखी गई उहनूं भी जदों मैं वाचदी हाँ देखदी हाँ तो मैनूं लगदा है कि स्पेस क्लेम करना है, इवन कविता नूं चुनना भी कविता नूं लिखना भी इह वी स्पेस क्लेम करना है। तो जदों मैं कहनी हां कि गर्ल्स हॉस्टल नूं सैलीब्रेट करना चाहीदा या मेरी कविता इस तरह करदी है तो इहदा मतलब इह है कि कुड़ियां औरतां उहनां दा अपनी थां दी मंग करना है। पूरी दुनिया दे विच गर्ल्स हॉस्टल फैलन तक स्पेस नूं क्लेम करना है, अपनी एजेंसी नूं।

इस दृष्टमान संसार विच सदा थिर रहन वाला परमात्मा है ते उसका अमोलक नाम ही है जो सदीवी है। संसारी जीवानू केवल ते केवल अकाल पुरख प्रभु अते उसके नाम दी ही टेक है, सहारा है, बाकी दे आसरे थोड़ चिरे आसरे ने। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे अंग 407 ते सुभायमान राग आसा विच उचारित शब्द विच पंचम दातार यही तथ बयान कर दे ने कि हे भाई, परमात्मा दा नाम अमोलक रतन है। जिस वडभागे प्राणी नूं प्रभु दा अमोलक नाम प्राप्त हो जांदा है, उही मनुख आत्मिक अडोलता प्राप्त कर लैंदा है ते टिका दी अवस्था विच विचरदा होया सुखाला जीवन बसर करदा है। उही सदीवी संगी साथी है जो अदवाटे नहीं छड़दा, पर ए वी है कि वह किसी चतुराई नाल वस विच नहीं आउंदा ते ना ही उस वर्गा कोई होर है। वह प्रीतम मेरा भरा, मेरा पिता, मेरी माता है ते उही भगतों का आसरा है, सहारा है, उही अलख है, उसका स्वरूप बयान तो परे है। गुरु ने कृपा करके मैनु सोझी बख्शी है, गुरु पासों ही मैं उस नाल मिलाप हासिल कीता है ते ए भी उस परमात्मा दा एक अजब कौतक है कि वह गुरु दे राही मिल पैंदा है। सरण करदियां इस तत्वी बयान करदी हुई इस रचना दा गायन, प्रीतम भाई बाप मोरो माई भगतन का ओला, अलख लखाया गुरते पाया नानक ए हर का चूड़ा। इस शब्द दा गायन की

0: ताता चोला। इस शब्द का गायन किया सिपाही अजीत सिंह ते उन्होंने रागी जत्थे ने। हुण सरवण करदे हां इस शब्द की व्याख्या। व्याख्याकार ने ज्ञानी नरेंद्र सिंह।
1: यह पावन पवित्र शब्द श्री गुरु अर्जन देव जी की मुबारक रसना तो राग गौड़ी गुआरेरी विच उचारण किया होया श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के पावन अंग नंबर 179 उत्ते शोभनीक है। धन गुरु अर्जन देव पातशाह जी इस शब्द के रहाव विच अपने मन नूं संबोधन करके समुची लुकाई नूं उपदेश दे रहे हैं कि मन तरह तरह के सवाल करता है, मन तरह तरह दीयां समस्यावां विच उलझिया होया है। यह लोड़दा है कि मैं इन्हां समस्यावां तों मुक्त हो जावां। फिर इस नूं पातशाह जवाब देंदे हन, विचार अधीन शब्द दीयां रहाव दीयां पंक्तियां ने मन मेरे गहो हर नाम का ओला तुझे ना लागै ताता झोला रहाओ। गहो दा अर्थ है पकड़ना कर, ग्रहण करना, धारण करना। हर नाम का ओला, ओला दा अर्थ है आसरा। हरी नाम दा आसरा तकना कर। देखो जिस तरह मीह पैंदा होवे असी छतरी तान लैंदे हाँ जां छत थले आके खड़े हो जांदे हाँ। कुदरती गल है कि मीह विच भिजण तों बच जावांगे। इस तरह अनेकां सौखियां मिसालां दे के आखिया, मन मेरे गहो हर नाम का ओला तुझे ना लागै ताता झोला। तैनू इस संसार दे जिहड़े विशे विकार आसा तृष्णा ईरखा नफरत दवैख दी अग अनेकां तरह दीयां मुश्किलां ते मुसीबतां हन, इन्हां दा तत्ता झोला भाव विकारां दी तत्ती हवा भी ना लगे, तत्ती हवा दा बुल्ला भी तेरे नेड़े ना आवे। गुरु अर्जन देव पातशाह जी विचार अधीन शब्द के आरंभ

0: करने के लिए 9 दबाएं। दिस इज द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट।
1: अजिही कोई भी फोन कॉल फ्रॉड हो सकती है। कोई भी बटन दबण तो पहला एक मिनट लिए रुको ते सोचो ते पुष्टि जरूर कर लो। सावधान रहो, सुरक्षित रहो।
2: रेडियन वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज ते डीटीएच दी आकाशवाणी पंजाब सेवा दा ए जलंधर केंद्र है। तुसी साडे प्रोग्राम वेव्स ऐप राही भी सुन सकते हो। हुण तो कुछ ही पलां विच यानी शाम 6 बजे साडे दिल्ली केंद्र तो सुनोगे हिंदी समाचार।
3: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। गृह मंत्री अमित शाह ने वर्ष 2029 तक भारत को नशा मुक्त बनाने के लिए अगले 3 वर्षों रूपरेखा तैयार जारी की है। उन्होंने मादक पदार्थों के खिलाफ देशव्यापी समन्वित अभियान चलाने का आह्वान किया। गोवा में गृह मंत्रालय की बैठक में श्री शाह ने कहा कि वर्ष 2019 से सरकार ने मादक पदार्थों की तस्करी पर कार्रवाई, खुफिया जानकारी साझा करने, वित्तीय जांच और पुनर्वास के उपायों को मजबूत किया है।
4: 2029 तक भारत को नशा मुक्त बनाने के लिए एक रोड मैप बनाया है। 26 से 29 को हमने मिशन मोड अवधि के रूप में चिन्हित किया है, समय सीमाएं तय की है। 4 स्तंभों पर हमारा रोड मैप विजन डॉक्यूमेंट है। एक इंटेलिजेंस और ऑपरेशन आधारित एनफोर्समेंट, दूसरा प्रीकर्सर और सिंथेटिक ड्रग पर नियंत्रण, तीसरा डिमांड और हार्म रिडक्शन और चौथा क्षमता निर्माण और समन्वय।
3: श्री शाह ने बताया कि वर्ष 2014 से 2024 के बीच 1,19,00,000 किलो से अधिक मादक पदार्थ जब्त किए गए। इनकी कीमत करीब 1,89,000 करोड़ रुपए है। गृह मंत्री अमित शाह दिल्ली में सत्य निकेतन में बहुमंजिला पीजी आवास की इमारत ढहने की घटना के बाद अपने निर्धारित कार्यक्रम से एक दिन पहले ही गोवा से दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। श्री शाह कल गोवा पहुंचे थे। दिल्ली में हुए हादसे के मद्देनजर गोवा भाजपा मुख्यालय में उनका निर्धारित कार्यक्रम रद्द कर दिया गया है। श्री शाह को कल 28वीं पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की बैठक में शामिल होना था और गोवा पुलिस को राष्ट्रपति पुलिस कलंक प्रदान करना था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं से बड़े सपने देखने और दुनिया का नेतृत्व करने का आह्वान किया है। वे कल दिल्ली विश्वविद्यालय के श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के शताब्दी समारोह को संबोधित कर रहे थे।
5: भारत की ग्लोबल कंसल्टिंग फर्म्स क्यों नहीं हो सकती? हमारी अकाउंटिंग फर्म, हमारी लीगल फर्म, हमारी फाइनेंशियल फर्म, ये सब ग्लोबल लीडर्स क्यों नहीं बन सकती? हम गर्व से कहते हैं कि आज भारतीय दुनिया की टॉप कंपनीज को लीड कर रहे हैं। अगर भारतीय दुनिया की टॉप कंपनियों को लीड कर रहे हैं तो भारतीयों की बनाई कंपनियां दुनिया को क्यों लीड न करें?
3: प्रधानमंत्री ने कहा कि आज दुनिया भारत की तेज आर्थिक वृद्धि और नीतिगत बदलावों की सराहना कर रही है। उन्होंने कहा कि वैश्विक चुनौतियों के बीच भारत की 7.8% की तिमाही आर्थिक वृद्धि देश की क्षमता को दर्शाती है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि शिक्षा का उद्देश्य केवल रोजगार की तैयारी नहीं बल्कि जिम्मेदार नागरिक तैयार करना भी होना चाहिए। गुवाहाटी में गीतानगर कॉलेज के स्वर्ण जयंती समारोह में उन्होंने कहा कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, अनुसंधान और चरित्र निर्माण देश की प्रगति के लिए जरूरी है। उपराष्ट्रपति ने उच्च शिक्षा में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी को नारी शक्ति का प्रतीक बताया। श्री राधाकृष्णन आज से असम के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। नई दिल्ली में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की तैयारियां तेज हो गई हैं। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 12 और 13 सितंबर को भारत मंडपम में आयोजित होगा। कोयला मंत्रालय ने मीडिया की उन खबरों का खंडन किया है जिसमें कहा गया है कि केंद्र से कोयले की पर्याप्त आपूर्ति नहीं होने के कारण पंजाब के ताप विद्युत संयंत्रों में कम बिजली उत्पादन हो रहा है। मंत्रालय ने कहा है कि कोल इंडिया लिमिटेड पंजाब सहित पूरे देश में बिजली उत्पादन के लिए निर्बाध कोयला आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। विदेश मंत्रालय ने समान क्षेत्रफल वाले विश्व मानचित्र को लेकर भारत का रुख स्पष्ट किया है। विदेश

0: मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में समान क्षेत्रफल वाले मानचित्र से जुड़े प्रस्ताव के पक्ष में वोट किया है। न्यायमूर्ति महेश चंद्र त्रिपाठी को बंबई उच्च न्यायालय का नया मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। राष्ट्रपति ने कल उनकी नियुक्ति को मंजूरी दी। वे बंबई उच्च न्यायालय के 50वें मुख्य न्यायाधीश होंगे। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने चाइना मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट का खिताब जीत लिया है। पुरुष डबल्स में फाइनल में भारतीय जोड़ी ने चीन के हे जी टिंग और रेन जियांग यू को हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज ते डीटीएच दी आकाशवाणी पंजाब सेवा दा ए जलंधर केंद्र है। तुसी साडे प्रोग्राम वेव्स ऐप राही भी सुन सकदे हो। लो सुनो साडे अज दे बाकी दे प्रोग्रामा दा वेरवा।

शाम 6:30 बजे सुनोगे देहाती प्रोग्राम। आज दे इस प्रोग्राम विच आलुआ च बीज ते सौंद बारे डॉक्टर अमरजीत सिंह होरना की दी गलबात सुनाई जाएगी। इस तो अलावा पंजाबी रूपक सुनोगे, पंजाबी सभ्याचार ते गहने, कम दियां गल्लां, कल दे प्रोग्राम ते मौसम दा हाल भी दस्या जाएगा।

रात 8 बजे तुहाडी चिट्ठियां ते आधारित प्रोग्राम सुनोगे तुहाडी चिट्ठी मिली। रात 9:15 बजे साढ़े दिल्ली केंद्र तो सुनोगे समाचार संध्या, 9 बजे सुनोगे न्यूज एट 9 ते रात 9:15 बजे सुनोगे स्पॉटलाइट। रात 9:30 बजे सुनोगे प्रोग्राम रूपकों का अखिल भारतीय कार्यक्रम साढ़े दिल्ली केंद्र तो। रात 10 बजे रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा सुनोगे साढ़े दिल्ली केंद्र तो, कलाकार होंगे एनआर प्रशांत। हिंदी पंजाबी अंग्रेजी खबर आपो अपने समय मुताबक नशर की जानकियां। इसी साढ़े अज के बाकी दिन के प्रोग्रामा का वेरवा आओ सुनते एक समूह गान।

मृदुसी देशभक्ति दसवं गान सुन रहे सी मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज ते आकाशवाणी दा ए जलंधर केंद्र है। हुण तो कुछ ही पलां विच यानी शाम 6:20 मिनट ते तुसी सुनोगे प्रादेशिक खबरां।

0: विश्वास अपनों के लिए सबसे सही RKLI, इससे बेहतर कुछ नहीं।
1: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RKLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
2: तुहाडी चा EMI किराया किवें मैनेज करा? वो एक जुगाड़ है, चंगा पैसा मिलूगा।
3: किवें?
2: अपने बैंक दा वेरवा दियो, कुछ लोग पैसे भेजणगे, उन्हां दे दसे खाते विच पैसे ट्रांसफर कर दियो, वो कमीशन मिलूगा।
3: एना सोखा?
2: वो कादा सोखा? ये मनी म्यूल है, गैर कानूनी पैसे कमांदे ने दूजियां दे खाते राही, अपराध है, वो जेल हो सकती है।
3: ना भाई जी ना।
4: अपना बैंक खाता सुरक्षित रखो, किसी नु वर्तन ना दियो। RBI कहंदा है,
5: जानकार बनो ते सचेत रहो।
6: नमस्कार, यह आकाशवाणी है। हुण तुसी चंचल शर्मा तो प्रदेशक खबरां सुनो। पहला इस बुलेटिन दीआं खास खबरां। सर्वोच्च अदालत ने कॉलसिम की सिफारिश तो बाद पंजाब ते हरियाणा हाई कोर्ट समेत 8 हाई कोर्टां च नवे चीफ जस्टिस नियुक्त किए। राज जैव विभिन्नता बोर्डां ते केंद्र शासित प्रदेश जैव विभिन्नता परिषदां की 16वीं राष्ट्रीय मीटिंग चंडीगढ़ च शुरू हुई। पंजाब सरकार वालों अज जलंधर के आदमपुर विच श्री गुरु रविदास जी महाराज के 650वें प्रकाश पुरब नूं समर्पित एक विशाल नगर कीर्तन दरबार आयोजन किया गया। कोला मंत्रालय ने उन्हें मीडिया रिपोर्टां नूं खारज किया है जिन्हां विच केंद्र तों कोले दी नाकाफी सप्लाई नूं पंजाब दे थर्मल पावर प्लांटां ते घट बिजली उत्पादन का कारण दस्या जा रहा है। ते गुरदासपुर पुलिस ने तीन वख-वख मामलों च 2 किलो हैरोइन समेत 3 नौजवानों नूं गिरफ्तार किया। सर्वोच्च अदालत दे कॉलजिम की सिफारिश तो बाद 8 हाई कोर्टां विच नवे चीफ जस्टिस नियुक्त किए गए ने। सोशल मीडिया एक्स ते एक पोस्ट विच केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि पंजाब ते हरियाणा हाई कोर्ट के जस्टिस अश्विनी कुमार मिश्रा नूं अदालत का चीफ जस्टिस नियुक्त किया गया। दिल्ली हाई कोर्ट के मौजूदा जज वलूरी कामेश्वर राव नूं पटना हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस नियुक्त किया गया। बंबे हाई कोर्ट के जज रविंदर वी कुगे कलकत्ता हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस होंगे। जस्टिस कृष्ण राम महापात्रा छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के अते संजय कुमार अग्रवाल राजस्थान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस होंगे। अल्पेश यशवंत कोकसे मध्य प्रदेश हाई कोर्ट अते पुष्पेंद्र सिंह भाटी जम्मू कश्मीर ते लद्दाख हाई कोर्ट के जस्टिस महेंद्र चंद्र त्रिपाठी बंबे हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाया गया। पंजाब के राज्यपाल अते केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के प्रशासक ने रवायती ज्ञान अते भाईचारक भागीदारी नूं समकाली संभाल पहुंच नाल जोड़न दी महत्ता ते जोर दित्ता है। प्रशासक अज चंडीगढ़ विच राज जैव विभिन्नता बोर्डां अते केंद्र शासित प्रदेश जैव वन सुवनता परिषदां दी 16वीं राष्ट्रीय मीटिंग दे उद्घाटन मौके बोल रहे सन। जिक्रयोग है कि राष्ट्रीय जैव विभिन्नता अथॉरिटी वालों आयोजित 6 से 7 सितंबर तक होने वाली इस 2 रोज़ा मीटिंग च देश भर के बोर्डां ते परिषदां दे चेयरपर्सन अते मैंबर सकत्तरां दे नालों नाल सीनियर अधिकारियां माहर ते विज्ञानियां ने हिस्सा लिया। इकट्ठ नूं संबोधन करदिआं राज्यपाल श्री कटारिया ने भारत की अमीर जैविक विरासत ते रवायती वातावरण कदरां कीमतां ते चानना पाया। गुलाब चंद कटारिया ने जोर दे के कहा कि वातावरण सुरक्षा भोजन ते पानी सुरक्षा रोजी रोटी ते पायदार विकास नाल नेड़ियों जुड़ी हुई है। राज्यपाल ने पंजाब ते चंडीगढ़ दीआं जलगाहां नदी ते वातावरण प्रणालियां अते खेतीबाड़ी जैव विभिन्नता दे वातावरण महत्व वल भी ध्यान दवाया। उन्हां जैव विभिन्नता प्रबंधन कमेटियां अते पीपल जैव विभिन्नता रजिस्टरां नूं मजबूत करन दी लोड़ ते जोर दित्ता ते जैव विभिन्नता संस्थावां ते स्थानक भाईचारां दरमियान नजदीकी तालमेल दी मंग कीती। इस मौके अपने संबोधन च केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण तहत किए गए वख-वख उपरालों का हवाला दिता। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि जैव विभिन्नता सोध एक्ट 2023 ते जैविक विभिन्नता नियम 2024 ने देश की जैविक विभिन्नता

सुंदर ते आकर्षक दिखन दी तमन्ना गलत नहीं है, पर शरीरक सुंदरता वल वधेरे उलार होना गलत रुझान है। मानसिक सुंदरता सदीवी ते मन ते अमिट प्रभाव छड़न वाली हुंदी है। गहनिया बिना मुटियार अपने आप नू अधूरी समझती है। इसे करके साडे लोक गहनिया दी मकबूलियत साडे लोक गीतां विचों भी मिलती है। जिवें किसी भैन दा व्याह पहला हो जांदा है तां ओह अपने वीर नू व्याह करवाउण लई आखदी है, उन्हां गीतां विच वी गहनिया दा जिक्र आउंदा है।

निरसंदेह लोक गीत किसी कौम दे हिरदे दा जानन ते अपने समय दे समाज दी तुर अंदर दी आवाज हुंदे ने। लोक गीतां विच इतिहास मिथिहास रस्मां रिवाजां धार्मिक आर्थिक पक्खां दा चित्रण सहज सुभा होया मिलदा है। लोक गीत ही लोक सदरां ते लोक जज्बें दी सही तर्जमानी करदे ने। लोक गीत किसी तो कुछ छुपा के नहीं रखते। हार शिंगार दा शौक शायद सारिया मुटियारां दा पूरा नहीं हुंदा। आर्थिक मंदवाड़ा कबीलदारी दियां तंगियां तुरशियां भी कई बार बड़ी वड्डी रुकावट बन जांदियां ने।

जिथे ए गहने मुटियार दी सुंदरता नू चार चंद लौंदे ने उथे समुचा वातावरण रंगीन होके रह जांदा है। जेकर किसे मुटियार दे नक विच पाए लौंग दे लिशकारे नू वेख हाली हाल डक लेंदे ने ता फिर कोई ना कोई गबरू अपने खान दी मुटियार नू ए भी उलांबा दे जांदा है।

नमस्कार, ए आकाशवाणी ए खबरां दे नाल मैं सरबजीत कौर। पहला इस बुलेटिन दियां खास खबरां। उपराष्ट्रपति सी पी राधा कृष्णन ने कहा कि विद्यक संस्थावां नूं विद्यार्थियों एक जिम्मेवार नागरिक बनाउण ते ध्यान केंद्रित करना चाहिए है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अज 2029 तक भारत नूं नशा मुक्त बनाउण लई 3 सालां दा रोड मैप पेश कीता। नवी दिल्ली दे सत्य निकेतन इलाके विच एक बहुमंजिला इमारत ढह जाण दी घटना च एक व्यक्ति दी मौत, कईआं दे मलबे हेठां दबे होण दा खदशा। कोला मंत्रालय ने पंजाब के थर्मल प्लांटा विच बिजली उत्पादन घटन करके केंद्र तो कोले की सप्लाई घट जाण संबंधी मीडिया खबरां दा खंडन कीता है। ते बैडमिंटन विच सात्विक साईराज रणकी रेतरी ते चिराग शेट्टी दी भारतीय जोड़ी ने आज शेंजन विच चाइना मास्टर्स विच मर्दां दे डबल्स दा खिताब जीत लिया है। हुण खबरां विस्थार नाल। उपराष्ट्रपति सी पी राधा कृष्णन ने जोर दे के कहा है कि विद्यक संस्थावां नूं विद्यार्थियों नूं करियर लई तैयार करन तों अगे जाना चाहिए है अते लोकतंत्र अते समाज लई जिम्मेवार नागरिक बनाउण ते ध्यान केंद्रित करना चाहिए है। अज गुवाहाटी दे गीता नगर कॉलेज दे गोल्डन जुबली समारोह नूं संबोधन करदे उन्होंने कहा कि देश की तरक्की लई गुणवत्ता वाली सिक्ख्या, खोज अते चरित्र निर्माण जरूरी ने। उपराष्ट्रपति ने उच्च सिक्ख्या विच औरतां दीआं वधदीआं प्राप्तियां ते चानणा पाया, इस नूं शलाघायोग तब्दीली ते नारी शक्ति दा झलकारा दस्सिया। उन्होंने कहा कि औरतां नूं सही सिक्ख्या ते मौके

0: विच दी हिंदी व्यंग वार्ता मेहमान मन पौंदी रही।
1: जी शुक्रिया अदा करिए जी, क्योंकि इन्होंने बहुत सारे प्रोग्रामों का, सुनील जी ने, सुनील जोशी, पंखू और नीतू भारद्वाज होर ने बहुत सारे प्रोग्राम सुने और उन्होंने तारीफ लिखी। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं जी। थोड़िया चिट्ठिया साढ़े वास्ते बेशकीमती होंदियां ने, हमेशा सानू माण बख्शदियां ने, इहदे वास्ते बहुत शुक्रिया जी।
0: चकला बाजार समाणा तो रंग बिरंगे स्याही दे नाल पप्पू राजा खुश दिल आ गए ने, नाल ही संगीता जिंदल।
1: खुशी ते इन्हां दी चिट्ठी विचों वैसे ही झलकदी रहिंदी है ना। नाम भी सुख नाल खुश दिल है,
0: बिल्कुल
1: वधिया लगदा है जी।
0: एक अठ दी गल करे ने कि तुहाडी चिट्ठी मिली प्रोग्राम परमजीत जी ते पूनम जी ने चंगा पेश कीता। तुहाडे सारे अनाउंसर प्रोग्राम चंगा पेश करदे ने, चिट्ठियां मिठियां फरमाइशी प्रोग्राम दे विच हर रोज चिट्ठियां पाउंदे हां पर साडे खत शामिल नहीं हुंदे। देहाती प्रोग्राम दे विच सब दी पसंद प्रोग्राम आ रहा की कारण है ते पुराने अनाउंसर सुखजीत नाल गलबात कराओ, असी करवा चुके हैं जी उन्होंने गलबात
1: जी, जी। बिल्कुल गलबात भी हो चुकी है और जिहड़ा इन्होंने लिखा ना कि साडे खत शामिल नहीं हुंदे, तुसी दसो इस तरह दे खत अखों परोखे हो सकदे आ? असी वैसे ही नहीं करदे,
0: दूरों ही दिख जांदे ने,
1: दूरों ही दिख जांदे ने। सो इस तरह दी शिकायत ना करया करो जदों कि शिकायत जायज़ ना होवे। हां ये हो सकदा कि तुसी ये उम्मीद कर रहे हो कि हरेक प्रोग्राम दे विच तुहाडा जिक्र होवे, वो शायद हमेशा संभव नहीं हुंदा, इस करके पर जदों भी तुहाडे खत मिलते हैं प्रोग्राम शामिल जरूर किए जाते हैं। बाकी देहाती प्रोग्राम च सब दी पसंद का जिक्र इन्होंने किया। वो प्रोग्राम फिलहाल असी पहला भी दस्या सी कि चिट्ठियां की कमी का करके उसनों शुरू नहीं कर रहे, पर जल्दी असी कोशिश करांगे कि इस प्रोग्राम नूं किसी होर प्लेटफॉर्म ते शुरू किया जा सके।
0: बिल्कुल बिल्कुल। अगला खत है जी ईमेल सुभाष गुदारा होना दी पिंड हीरा वाली जिला फाजिलका तो।
1: जी
0: ये लिखते ने कि हर बार तुहाडी चिट्ठी मिली प्रोग्राम सुनते हैं, पिछला प्रोग्राम वीरेंद्र जी ने कल ही पेश किया, 30 तरीक नूं सवेरे मन की बात प्रोग्राम सुनिया बहुत चंगा लगा, 1 तारीख नूं राती खेड संसार प्रोग्राम सुनिया जिस विच वीरेंद्र जी ने एथलैटिक खिडारन सरबजीत कौर नाल गलबात सुनाई चंगी लगी, 2 तारीख नूं शामी युववाणी दे प्रोग्राम यंगिस्तान विच आरजे शिवम ने बाजवा सिस्टर्स नाल जो मुलाकात कीती चंगी लगी, 2 तारीक नूं शामी 6 बजे तो 7 बजे तक सुरभी ने लव यू जिंदगी प्रोग्राम चंगा पेश किया, 3 तारीक नूं सवेरे 8 बजे आरजे अंजली ने गुड मॉर्निंग जलंधर विच डॉक्टर पूनम नाल गलबात कीती चंगी लगी, 3 तारीक नूं FM रेनबो जलंधर दे प्रोग्राम दिला शायर है विच बरुण कुरमान ने चंगा प्रोग्राम पेश किया, इसी तरह आरजे भूमिका ने युववाणी दी पेशकारी भी चंगी कीती, बाकी दे प्रोग्राम जिवें हैलो फरमाइश तमक जलंधर पैंदी चिट्ठियां मिठियां सोहनी सवेर सारे प्रोग्राम साडा मनोरंजन करे ने ते कृष्ण जन्माष्टमी दियां इन्हां ने बहुत मुबारकां भेजियां ने।
1: साडे वल्लों वी आप सब नूं और तमाम सुनण वालियां नूं श्री कृष्ण जन्माष्टमी दियां बहुत बहुत मुबारकां होण जी। बाकी इन्हां ने वख-वख आरजेस दा नाम लिख के उन्हां वल्लों किहड़ा किहड़ा प्रोग्राम कदों कदों पेश कीता गया उहदी सराहना कीती है जी, उहदे वास्ते असीं तुहाडा बहुत शुक्रिया अदा करदे हां जी।
0: अगला जो ईमेल है जी बड़ी लंबी ईमेल भेजी है सानू हमेशा वांग अमनदीप सिंह होणा ने हठूर पिंड लुधियाणा तो।
1: जी
0: कहिंदे कि आकाशवाणी मेरे लिए किसी स्कूल तो घट नहीं क्योंकि मैं बचपन तो ही हुण तक आकाशवाणी तो बहुत कुछ सिखिया है।
1: क्या बात है जी।
0: ते हुण भी सिख रहा तुहाडे केंद्र तो पेश किया जाता गुरबाणी विचार दरबार साहब अमृतसर तो पेश किया जाता कीर्तन असी रोजाना सरवण करते हैं
1: जी।
0: मिति 26/8 नूं वसदे विड़े प्रोग्राम विच कमलेश गुलाटी जी नाल गलबात सुनवाई गई जो काफ़ी पसंद आई। मैडम जी द्वारा गलबात दौरान नवे रेडियो अनाउंसर्स दे पंजाबी भाषा दे उच्चारण ते भाषा संबंधी पकड़ ना होण बारे भी गलबात कीती गई जो कि चिंता ते सोच विचार दा विशा है
1: जी।
0: हो सकदा है मेरे या किसी होर स्रोते दे उच्चारण या पंजाबी भाषा ते पकड़ ज़्यादा ना होवे पर कई बार कहिंदे आकाशवाणी जलंधर तो भी जो माइक तो बोल रहे ने उन्हां दे उच्चारण संबंधी भी गलतियां हो जांदियां ने कि असी उन्हां दे उच्चारण नूं गलत नहीं मन सकदे।
1: बिना शक मन सकते हैं जी, इंसान गलती का पुतला है और गलती उस तो होर भी ज्यादा गंभीर हो जाती है जे उहदे विच सुधार ना किया जाए। सो असी कोशिश करते रहने जी कि साड़ी गलती जिहड़ी आ उहनू मन्या जाए और उहनू गंभीर होने तो बचाया जाए क्योंकि इस तो पहला कोई गंभीर हो जाए उहदे विच संभाल या सुधार किया जा सके।
0: बिल्कुल। अगे लिखते हैं कि मिति 26 तारीख न बुधवार शाम नूं चंचल शर्मा ने समाचार समीख्या दौरान पिछले हफ्ते हुई खेडा विच भारत दे एथलीटां दी ते हाकी टीम दी कारगुजारी बारे समीख्या कीती। इस उपरंत एक हिंदी वार्ता रक्षाबंधन एक दार्शनिक पक्ष सुनिया वधिया लगी। FM रेनबो जलंधर तो इनफो टाइम ते दिल चाहता है प्रोग्राम हरीश जी ने वधिया पेश कीता। हरीश जी जदों भी प्रोग्राम दे विच आउंदे ने तां जानकारी दा पिटारा लै के प्रोग्राम दे विच आउंदे ने सब नूं जानकारी दिंदे ने। मिति 26 नूं ही रात

राजा। गीत से जी लव स्टोरी फिल्म तो इस गीत में गाया सी लता मंगेशकर ते किशोर कुमार ने। अगला गीत तड़ी नजर फिल्म लाला मजनू तो इस गीत में गाया लता मंगेशकर ते मोहम्मद रफी ने। संगीत बद की तय मदन मोहन ने ते लिखा है साहिर लुधियानवी ने।

एगेसे जी लाला मजनू फिल्म तो गाया लता मंगेशकर ने मोहम्मद रफी ने। प्रोग्राम में अगला अगला गीत तुहाडे वास्ते नूरी फिल्म तो इस गीत नू गाया लता मंगेशकर ते नितिन मुकेश ने, संगीत बद कीता खयाम ने, लिखिया जान निसार अख्तर ने।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं वैष्णवी। मुख्य समाचार। दिल्ली के सत्यनिकेतन इलाके में बहुमंजिला इमारत ढहने से 3 लोगों की मौत, जबकि 11 लोग सुरक्षित निकाले गए। अब भी कई लोगों के फंसे होने की आशंका, बचाव अभियान जारी। गृहमंत्री अमित शाह ने वर्ष 2029 तक भारत को नशा मुक्त बनाने के लिए 3 वर्षों की रूपरेखा जारी की। मादक पदार्थों के नेटवर्क को समाप्त करने की ये रणनीति 4 स्तंभों पर आधारित। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने युवाओं से स्वस्थ और अनुशासित जीवन जीने तथा नशीले पदार्थों से दूर रहने का आग्रह किया। सोशल मीडिया के रचनात्मक उपयोग का भी आह्वान किया।

0: विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने देश के बढ़ते स्टार्टअप इकोसिस्टम को महानगरों से आगे ले जाने का आह्वान किया। विज्ञान स्टार्टअप तथा उद्योग के बीच मजबूत संबंध बनाने पर बल दिया। और भारत की पुरुष डबल्स जोड़ी सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने चाइना मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में अपना पहला खिताब जीता। और अब समाचार विस्तार से। नई दिल्ली के सत्य निकेतन इलाके में आज दोपहर एक बहुमंजिला इमारत ढहने से तीन लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोगों के मलबे में फंसे होने की आशंका है। अब तक 11 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला जा चुका है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने घटनास्थल का दौरा कर स्थिति का जायजा लिया। संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि हादसे के लिए जो भी जिम्मेदार पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
1: 11 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। जो भी व्यक्ति इसके जिम्मेदार हैं, चाहे वो बिल्डिंग का मालिक है या अधिकारी है, क्योंकि बिल्डिंग पुरानी थी और इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन का रेनोवेशन का काम चल रहा था। बेसमेंट में किसी प्रकार की खुदाई चल रही थी जिसके कारण से पिलर जो है वो हिला और वो पूरी बिल्डिंग ढह गई। पीजी के नाते ये बिल्डिंग काम कर रही थी, बच्चे इसके अंदर थे और लगातार सभी एजेंसी काम कर रही है। हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है इन बच्चों की पहले जान बचाई जाए। दोषी को छोड़ा नहीं जाएगा, ये बिल्कुल निश्चित रूप में कह रही हूँ।
0: दिल्ली के उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू भी घटनास्थल पर पहुंचे। उन्होंने कहा कि स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है और जरूरतमंदों तक हर संभव सहायता पहुंचाई जाएगी। एनडीआरएफ के महानिरीक्षक एनएस बुंदेला ने बताया कि एनडीआरएफ की दो टीमें मौके पर बचाव कार्य में जुटी हैं।
2: दो टीमें करीब 70 लोग हैं जो वहाँ पर काम कर रहे हैं, जहाँ पर और विक्टिम्स को हमने आइडेंटिफाई किया है और इसमें हमने अपने कैनाइंस भी इस्तेमाल कर रहे हैं। हम कटिंग इक्विपमेंट है, टेक्निकल इक्विपमेंट को भी इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी तक 4 लोगों को एनडीआरएफ की टीम ने फायर सर्विस, दिल्ली पुलिस और जो भी लोकल कम्युनिटी है वहाँ पर इंफॉर्मेशन दे रही है, असिस्टेंस दे रही है, सबके कोऑपरेशन से हमने 4 विक्टिम्स को निकाला।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने दिल्ली में इमारत ढहने की घटना पर दुख व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि अधिकारी घटनास्थल पर राहत और बचाव कार्य में जुटे हैं तथा हादसे से प्रभावित लोगों की मदद की जा रही है। गृहमंत्री ने कहा कि स्थानीय प्रशासन और एनडीआरएफ आपसी समन्वय से राहत और बचाव कार्य में जुटे हैं। घायलों को हर संभव चिकित्सा सहायता दी जा रही है। श्री शाह ने हादसे में घायल सभी लोगों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। रक्षा मंत्री ने कहा कि दुख की इस घड़ी में उनकी संवेदनाएं शोक संतप्त परिवारों के साथ हैं। उन्होंने घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। श्री नड्डा ने स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। उन्होंने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के निदेशक और केंद्र सरकार के अस्पतालों को हर संभव चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए। इस बीच श्री शाह ने बताया कि उन्होंने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, दिल्ली पुलिस आयुक्त और राष्ट्रीय आपदा मोचन बल एनडीआरएफ के महानिदेशक से बात कर स्थिति की जानकारी ली। गृहमंत्री ने कहा कि स्थानीय प्रशासन और एनडीआरएफ आपसी समन्वय से राहत और बचाव कार्य में जुटे हैं। घायलों को हर संभव चिकित्सा सहायता दी जा रही है। श्री शाह ने हादसे में घायल सभी लोगों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। इसके अतिरिक्त श्री शाह अपने निर्धारित कार्यक्रम से एक दिन पहले ही गोवा से दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। श्री शाह कल गोवा पहुंचे थे। दिल्ली में हुए हादसे के मद्देनजर गोवा भाजपा मुख्यालय में उनका निर्धारित कार्यक्रम रद्द कर दिया गया। श्री शाह को कल 28वीं पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की बैठक में शामिल होना था और गोवा पुलिस को राष्ट्रपति पुलिस कलर प्रदान करना था। इससे पहले गोवा में गृह मंत्रालय की बैठक में श्री शाह ने वर्ष 2029 तक भारत को नशा मुक्त बनाने के लिए अगले 3 वर्षों की रूपरेखा भी जारी की है।
3: 4 स्तंभों पर हमारा रोड मैप विजन डॉक्यूमेंट है। एक इंटेलिजेंस और ऑपरेशन आधारित एनफोर्समेंट, दूसरा प्रीकर्सर और सिंथेटिक ड्रग पर नियंत्रण, तीसरा डिमांड और हार्म रिडक्शन और चौथा क्षमता निर्माण और समन्वय।
0: श्री शाह ने कहा कि वर्ष 2019 से सरकार ने मादक पदार्थों की तस्करी पर कार्रवाई, खुफिया जानकारी साझा करने, वित्तीय जांच और पुनर्वास के उपायों को मजबूत किया है।
3: 2004 से 14 जो कांग्रेस का शासन था उसमें ड्रग की मात्रा 26 लाख किलोग्राम और आज वो बढ़कर 14 से 26 में 1 करोड़ 19 लाख किलोग्राम से ज्यादा।

0: रहा है, उसका मूल्य 1,89,000 करोड़, 14 से 26 में 48,66,000 किलो ड्रग डिनिस्ट करने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
3: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
4: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
3: अब तक इस योजना से 9,50,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
1: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने युवाओं से सोशल मीडिया का रचनात्मक उपयोग का आह्वान किया है। उन्होंने नशीले पदार्थों से दूर रहने और अपने दोस्तों को भी नशे से दूर कर रहने के लिए भी प्रेरित करने का आह्वान किया है। असम के गुवाहाटी में गीतानगर कॉलेज के स्वर्ण जयंती समारोह में श्री राधाकृष्णन ने कहा कि विद्यार्थियों को जिम्मेदार फैसले लेने और अपने समय, स्वास्थ्य तथा भविष्य की रक्षा पर ध्यान देना चाहिए।
5: Our thoughts, our thinking, our actions should be controlled by one single factor, that is our own brain. Drugs should not determine what we should think. Our brain should determine what we should think and act. That's why wherever I am going, I am always saying, say no to drugs. Not only you should not take the drugs, you should not allow your friends, family members also should not take drugs.
1: असम के विकास का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि पिछले 5 वर्षों में राज्य की अर्थव्यवस्था में 45% की वृद्धि हुई है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए पूर्वोत्तर सहित हर राज्य और क्षेत्र का समावेशी विकास जरूरी है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने देश के तेजी से बढ़ते स्टार्टअप इकोसिस्टम को महानगरों से आगे ले जाने और विज्ञान, स्टार्टअप तथा उद्योग के बीच मजबूत संबंध बनाने पर बल दिया है। कोलकाता में राइज कॉन्क्लेव के उद्घाटन में डॉ. सिंह ने कहा कि दूसरे और तीसरे स्तर के शहरों में नवाचार की क्षमता को पहचानने की जरूरत है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsoneair.gov.in और हमारी न्यूज ऑन EIR ऐप पर भी उपलब्ध है।
6: ध्यान दें, आपकी मेहनत को राष्ट्रीय पहचान। पशुपालन क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने और नवीन प्रौद्योगिकी प्रथाओं को अपनाने वालों को भारत सरकार का पशुपालन एवं डेयरी विभाग प्रदान करता है राष्ट्रीय सम्मान। आज ही नामांकन करें राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 के लिए। इस पुरस्कार के लिए 3 श्रेणियों में होता है चयन, सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान, सर्वश्रेष्ठ डेयरी सहकारी समिति और सर्वश्रेष्ठ AI तकनीशियन। उत्तर पूर्वी क्षेत्र और हिमालयी राज्यों के लिए विशेष पुरस्कार का प्रावधान। नामांकन की तिथि 10 अगस्त से 10 सितंबर 2026 तक, तो देर किस बात की। आज ही आवेदन करें www.awards.gov.in पर या संपर्क करें नजदीकी CSC केंद्र पर। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 पशुपालन एवं डेयरी विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
7: आकाशवाणी समाचार से जुड़े रहिए, expert@AIRnews हिंदी को फॉलो करें और ताजा खबरों के लिए newsonair.gov.in पर जाएं।
8: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए, expert@AIRnews हिंदी को फॉलो करें और PB शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने।
1: ये आकाशवाणी है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत तेजी से आर्थिक शक्ति बन रहा है। देश व्यापार, वाणिज्य और उद्योग क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है।

0: और मध्य प्रदेश भी इस विकास यात्रा में आगे बढ़ रहा है। डॉक्टर यादव 3 दिन की दुबई यात्रा पर आज संयुक्त अरब अमीरात पहुंचे। संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि यात्रा का उद्देश्य मध्य प्रदेश में अधिक निवेश और नए उद्योग आकर्षित करना है। ईरान और अमेरिका के बीच तनाव लगातार बढ़ रहा है। क्षेत्र में बढ़ते सैन्य टकराव के बीच दोनों देश एक दूसरे पर हमले कर रहे हैं। ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स IRGC ने कहा कि उसकी एरोस्पेस फोर्स ने कई बैलिस्टिक मिसाइलों से एक अमेरिकी विमानवाहक पोत और एक विध्वंसक पोत को निशाना बनाया। ईरान ने इन हमलों को दिन में अमेरिका द्वारा ईरानी तेल टैंकरों पर किए गए हमलों की जवाबी कार्रवाई बताया। मध्य प्रदेश सरकार ने सागर जिले में संदिग्ध जहरीली और अवैध शराब के मामले में बड़ी कार्रवाई की है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के निर्देश पर आबकारी विभाग के 3 अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है। एक अन्य अधिकारी को जिले से हटाकर मुख्यालय से संबद्ध कर दिया गया है। मध्य प्रदेश में वन्य जीवों के शिकार के खिलाफ चल रहे अभियान में स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स ने बाघों के शिकार के आरोपी शेरू पारधी उर्फ शेरू सिंह को शहडोल के ब्योहारी से गिरफ्तार किया है। शेरू पारधी कटनी का रहने वाला है और करीब 1.5 साल से फरार था। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के दौरान बिहार, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर के राज्यों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग के अनुसार कल आंध्र प्रदेश, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, बिहार, झारखंड, कर्नाटक, ओडिशा, उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में गरज चमक के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना है। इस बीच उत्तर प्रदेश में कई नदियां अब भी उफान पर है और 24 जिले बाढ़ से प्रभावित हैं।
1: शाहजहांपुर जिले में गंगा और रामगंगा नदियों का जलस्तर खतरे के निशान के करीब है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज चित्रकूट में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण और रामघाट का स्थलीय निरीक्षण किया। उन्होंने 800 बाढ़ प्रभावित परिवारों को राहत सामग्री वितरित की और बेघर परिवारों को भूमि आवंटन प्रमाण पत्र दिए। इस बीच मौसम विभाग ने राज्य के पूर्वी हिस्से में अगले 4 दिनों तक और पश्चिमी जिलों में अगले 2 दिनों तक भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: उधर बिहार के कई हिस्सों में बाढ़ के कारण जनजीवन प्रभावित हुआ है। गंगा, गंडक और कोसी समेत कई प्रमुख नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। गंगा के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए निचले इलाकों में विशेष सतर्कता बरती जा रही है। चीन के शेंजेन में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने चाइना मास्टर्स बैडमिंटन का खिताब जीत लिया है। पुरुष डबल्स फाइनल में भारतीय जोड़ी ने चीन के हे जी टिंग और रेन जियांग यू को हराया। इस वर्ष ये उनका दूसरा सुपर 750 और कुल मिलाकर 4th खिताब है। सात्विक चिराग की जोड़ी इस टूर्नामेंट में 2023 और 2025 में उपविजेता रही थी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दिल्ली के सत्यनिकेतन इलाके में बहुमंजिला इमारत ढहने से 3 लोगों की मौत, जबकि 11 लोग सुरक्षित निकाले गए। अब भी कई लोगों के फंसे होने की आशंका, बचाव अभियान जारी। गृहमंत्री अमित शाह ने वर्ष 2029 तक भारत को नशा मुक्त बनाने के लिए 3 वर्षों की रूपरेखा जारी की। मादक पदार्थों के नेटवर्क को समाप्त करने की ये रणनीति 4 स्तंभों पर आधारित। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने युवाओं से स्वस्थ और अनुशासित जीवन जीने तथा नशीले पदार्थों से दूर रहने का आग्रह किया। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने देश के बढ़ते स्टार्टअप इकोसिस्टम को महानगरों से आगे ले जाने का आह्वान किया। और भारत की पुरुष डबल्स जोड़ी सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने चाइना मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट का खिताब जीता। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: Good evening. This is Akashwani. I am Anuja Kumar with the news at 9. The headlines. Multi-story building collapses in Satyaniketan area of Delhi. 3 persons dead and 11 evacuated. Several feared trapped as rescue operation continues. Home Minister Amit Shah announces a 3-year roadmap for drug-free India by 2029, outlines 4-pillar strategy to dismantle narcotics networks. Vice President CP Radhakrishnan urges youth to shun substance abuse, lead healthy and disciplined lives, calls for constructive use of social media. Science and Technology Minister Jitendra Singh calls for expanding India.

0: रूपकों के अखिल भारतीय कार्यक्रम के अंतर्गत सुनेंगे रूपक राखी गढ़ी मिट्टी के नीचे सोया महानगर। आलेख है डॉक्टर अप्पू सहारण का, प्रस्तुतकर्ता विनय कुमार।
1: आज की यात्रा किसी सड़क या ट्रेन की नहीं, यह यात्रा है समय की रेखा पर पीछे लौटने की। हमारी आज की आधुनिक दुनिया से मिलकर हम पहुंच रहे हैं लगभग 7000 वर्ष पीछे। हरियाणा के हांसी जिले की उस पावन धरा के गर्भ में दबा है सिंधु सरस्वती सभ्यता का एक विशाल सुनियोजित महानगर। पक्की ईंटों के मकान, चौड़ी सड़कें, वैज्ञानिक जल निकासी, कुएं, दस्तकार, व्यापारी और कृषि पर आधारित एक समृद्ध समाज, यही पहचान है राखी गढ़ी की।
2: हजारों वर्षों तक गुमनामी के अंधेरे में छिपा इतना बड़ा महानगर आखिर सामने कैसे आया? क्या यह किसी आकस्मिक संयोग का परिणाम था या निरंतर पुरातात्विक साधना का?
1: पुरातत्वविद व महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग में प्रोफेसर रहे अमर सिंह ने कई वर्षों तक पढ़ाया है। वे समय समय पर छात्रों को राखी गढ़ी में हो रहे उत्खनन कार्यों को दिखाने के लिए ले जाते रहे। बताते हैं,
3: जहाँ तक राखी गढ़ी के प्रास्थल की खोज का प्रश्न है, हमारी जानकारी के अनुसार झज्जर गुरुकुल के संस्थापक व प्राचीन वस्तुओं के संग्रहकर्ता आचार्य भगवान देव, जिन्हें स्वामी उमानंद सरस्वती के नाम से भी जाना जा

0: आता है। उन्होंने 1960 के दशक के प्रारंभ में राखी द्वीप पुरास्थल का दौरा किया। इस दौरान उनको यहाँ से कुछ प्राचीन बर्तन तथा वस्तुएं मिली, लेकिन वह इन वस्तुओं के ऐतिहासिक महत्व को स्वयं नहीं समझ पाए। उन्होंने ये अवशेष कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के प्रसिद्ध पुरातत्ववेत्ता डॉक्टर सूरज भान को दिखाए। इसके पश्चात डॉक्टर सूरज भान ने 1963 में राखी गढ़ी का दौरा किया और वहाँ से प्राप्त अवशेषों की पहचान करके आधिकारिक रूप से ये सिद्ध कर दिया कि ये अवशेष भारत की प्राचीन सिंधु अथवा हड़प्पा सभ्यता से संबंधित हैं। उन्होंने राखी गढ़ी के महत्व को समझकर आसपास के क्षेत्र का व्यापक रूप से सर्वेक्षण किया, जिसके परिणाम स्वरूप अन्य अनेक ऐसे ही पुरास्थल प्रकाश में आए। राखी गढ़ी की खोज ने कि ये सभ्यता केवल सिंधु घाटी क्षेत्र तक ही सीमित थी, बल्कि ये पुष्ट कर दिया कि वह भारत में सरस्वती नदी तथा इसके आसपास के विस्तृत क्षेत्र में भी ये फली फूली। इसीलिए सिंधु सभ्यता को सिंधु सरस्वती सभ्यता का नाम दिया गया है। अंततः 1997-98 के सत्र में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की ओर से डॉक्टर अमरेंद्र नाथ ने यहाँ निरंतर 3 सत्रों तक उत्खनन किया। उत्खननों के परिणाम स्वरूप यहाँ पर प्रारंभिक हड़प्पा और विकसित हड़प्पा के सांस्कृतिक अवशेष मिले। 2011 से 16 के बीच पुणे के डेक्कन कॉलेज के तत्कालीन कुलपति एवं प्रसिद्ध पुरातत्ववेत्ता डॉक्टर वसंत शिंदे के नेतृत्व में उत्खनन किए गए। टीला संख्या 7 से हड़प्पा कालीन कब्रिस्तान भी मिला, जिसमें नर और मादा मानव कंकाल में। 2022-23 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के संयुक्त महानिदेशक संजय मंजुल ने भी यहां पर उत्खनन कार्य किया। अभी भी 2025-26 के सत्र में यहां पर उत्खनन शाखा नोएडा 2 के मनोज सक्सेना के निर्देशन में कार्य जारी है।
1: सभ्यताएं हमेशा नदियों के आंचल में पनपती हैं। रावी के तट पर हड़प्पा का विस्तार हुआ और सिंधु के किनारे मोहनजोदड़ो का। वहीं राखीगढ़ी का सीधा संबंध था सरस्वती दृषद्वती के सूखे मैदानी क्षेत्र से, जो कभी अत्यधिक उपजाऊ था। राखीगढ़ी केवल एक शहर नहीं था, बल्कि इस पूरे नदी क्षेत्र का व्यापारिक और कृषि केंद्र था। यहाँ की समृद्ध खेती और जल प्रबंधन ही इस विशाल नगर के भरण पोषण का आधार था। प्रसिद्ध पुरातत्वविद डॉक्टर रविंद्र सिंह बिष्ट कहते हैं कि
2: दृषद्वती नदी सरस्वती नदी की प्रमुख सहायक नदी थी। ये नदियाँ शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती थी, जिसमें सरस्वती उत्तर की ओर तथा दृषद्वती दक्षिण की ओर बहती थी।
3: ये एक गंगा की तरह एक सहायक नदी थी दृषद्वती, जो आपके शिवालिक से निकल के और फिर आगे चल के ये करनाल और पानीपत के बीच से होते हुए और कई तीर्थ, महाभारत में बहुत तीर्थों का स्थान का धाम है, तो सफीदों सत्य देवी और सही बमन के पास जाती थी, फिर पश्चिम को मुड़ जाती थी और इसके पास अश्विन वराह जीव और राम राय ये पवित्र तीर्थ स्थान थे और राम राय में इसके 4 द्वार थे, उसमें राम राय था और राम राय के पास आपका राखी गढ़ी बसा हुआ है। और सरस्वती से मैंने एक संबंध बता दिया आपको और इसकी जो धारा है वो आज भी आसन वराह जीन राम राय आप होते हुए हाँसी हिसार सुपाल मातर श्राम भादरा रावस्तर सोथी होते हुए ये सरस्वती से संगम करती है सूरत दर के पास, सरस्वती इस पर संबंध है।
1: ऋग्वेद की ऋचाओं में इन नदियों किनारे भरतवंशी राजाओं द्वारा यज्ञ करने का वर्णन मिलता है। रविंद्र सिंह बिष्ट मानते हैं कि सरस्वती के दक्षिण में तथा दृषद्वती के उत्तर में जो क्षेत्र है उसे धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र कहा गया है।
3: नदी नदी के किनारे है, अब वो लुप्त प्राय हो गई है, लेकिन एक जमाने में वो शिवालिक से लेके तो जहाँ तक सरस्वती संगम होता था ये सूरत गढ़ के पास एक प्राचीन स्थान है रंग महल के पास, इसका मेल होता था सरस्वती का। इसका इतना महत्व था, मैं आपको ऋग्वेद की बात बताता हूँ कि उसमें एक श्लोक आता है कि दृषद्वत्याम मानुष आपयायाम सरस्वत्याम रेव दग्नि दिदीहि। इसका मतलब है कि दृषद्वती आपया और सरस्वती इतनी पवित्र नदियाँ थी कि इसके किनारे भरत वंश के राजकुमार देव श्रवस और देव वाप इन तीनों नदियों के किनारे यज्ञ किए। हो सकता है एक स्थान उसका राखी गढ़ी रहा।
1: राखी गढ़ी लगभग 350 से 500 हेक्टेयर क्षेत्र में फैले 9 टीलों का समूह है। यहाँ परिपक्व हड़प्पा काल के साथ साथ पूर्व हड़प्पा काल

0: के साक्ष्य भी मिले हैं। ग्रिड पैटर्न पर बनी सड़कें, नालियां और अग्निवेदियां यह सिद्ध करती हैं कि यहां का समाज प्रशासनिक और नागरिक दृष्टि से अत्यंत परिपक्व था। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अधिकारी एवं वर्तमान उत्खननकर्ता मनोज सक्सेना ने बताया,
1: राखी गढ़ी ग्राम दो राखी खास और राखी शाहपुर को मिलाकर बना है। राखी गढ़ी के आसपास 9 टीले हैं जिनका विस्तार लगभग 350 हेक्टेयर में फैला है, जो इसे सिंधु सभ्यता का अब तक का सबसे विशाल नगरीय केंद्र बनाता है। राखी गढ़ी ग्राम टीला संख्या 4 और 5 पर बसा है, तो यहाँ उत्खनन का कार्य संभव नहीं है, परंतु टीला संख्या 5 पर कुछ क्षेत्र में हमें कार्य करने की जगह मिली और जहां पर हम लोगों ने इस वर्ष के जो एक्सकवेशन है उसमें हमने कुछ ट्रेंच वहां लगाए और हमें कुछ घरेलू संरचनाओं की कच्ची मिट्टी की ईंटों के से निर्मित है वो प्राप्त हुई है। टीला संख्या 1 से 9 तक के अध्ययन से हमें पूर्व हड़प्पा, प्रारंभिक हड़प्पा एवं परिपक्व हड़प्पा काल के निरंतर सांस्कृतिक विकास और अधिवास के अनुक्रम को दर्शाते हुए प्रतीत होते हैं। यहाँ से उत्खनन में विकसित नगर नियोजन के प्रमाण मिले हैं, जिसमें सड़कों को समकोण पर काटना, जल निकासी की उचित व्यवस्था, पक्की ईंटों की नालियां, कच्ची मिट्टी की ईंटों या सन ड्राइड ब्रिक्स का उपयोग घरेलू संरचनाओं में मिला है और 4:2:1 के अनुपात वाली ईंटों का प्रयोग मिला है। राखी गढ़ी की विशालता एवं विस्तार को देखते हुए इसे सिंधु सभ्यता की पूर्वी राजधानी माना जा सकता है। टीला संख्या 2 और 7 के उत्खनन ने हमें सर्वाधिक आश्चर्य में डाला। टीला संख्या 2 से अर्ध बहुमूल्य पत्थरों या सेमी प्रीशियस स्टोन्स के मनकों का प्रतिशत पूर्व के उत्खननों की तुलना में बहुत अधिक है।
2: राखी गढ़ी से कई हड़प्पा कालीन वस्तुएं मिली हैं। उत्खनन के दौरान अनेकों ऐसी छोटी छोटी चीजें प्राप्त हुई जो इस सभ्यता के लोग अपने दिनचर्या में उपयोग करते थे। प्रोफेसर अमर सिंह बताते हैं,
3: तांबे और सोने के आभूषण, पकी मिट्टी और सेलखड़ी से निर्मित मोहरे तथा मनके बनाने के केंद्र मिले हैं जो इसके विकसित शहरी रूप को दर्शाते हैं। चाक पर बने मिट्टी के बर्तन जिन पर काले रंग से भिन्न भिन्न प्रकार के चित्रण, चर्ट पत्थर से बनी ब्लेड्स, अर्ध बहुमूल्य पत्थरों के अनेक प्रकार के मनके, पकी मिट्टी से निर्मित मनके, चूड़ियां, पशु हनुमानों की मूर्तियां, खिलौना गाड़ियां आदि भी प्रमुख रूप से मिली।
2: राखी गढ़ी वासी मामूली वस्तुओं से लेकर लैपिस लाजुली पत्थर से बने श्रृंगार के कीमती आभूषणों का अक्सर प्रयोग किया करते थे।
1: यहाँ से हमें कार्नेलियन, लैपिस लाजुली, जास्पर आदि के मनके, सोने के मनके, चर्ट के ब्लेड, टेराकोटा एवं शेल की बैंगल्स, अंजन सलाखा आदि के साथ साथ करीब करीब 2 मीटर मोटी दीवारों की घरेलू संरचनाएं भी प्राप्त हुई हैं। टीला संख्या 7 जो कि दफन स्थल या बरियल माउंड है, ये 7-8 मानव कंकाल मिले हैं, जिसमें एक मानव कंकाल के पास से 17 सोने के मनके, 2 सोने के फाइल और 42 मृदभांड मिले हैं जो उस समय की समृद्ध सांस्कृतिक, समाधि परंपरा और आर्थिक संपन्नता को दर्शाते हैं।
0: अब प्रमाणित हो चुका है कि सिंधु घाटी सभ्यता का सुदूर क्षेत्रों में फैली अन्य सभ्यताओं के साथ मेलजोल होने के साथ साथ अच्छे व्यापारिक संबंध भी थे। राखी गढ़ी प्रमुख व्यापारिक केंद्र रहा होगा और यहाँ से भी दूर दूर तक व्यापार किया जाता होगा। महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग के सहायक प्रोफेसर डॉक्टर विकास पवार मानते हैं कि राखी गढ़ी के अन्य सभ्यताओं के साथ पारस्परिक, सांस्कृतिक और व्यापारिक संबंध रहे होंगे।
4: पुरातात्विक उत्खननों से अनेकों प्रकार के अर्धकीमती पत्थरों के मनके अवशेष रूप में मिले हैं जिनका कच्चा माल राखी गढ़ी के आसपास नहीं मिला। ये कच्चा माल सुदूर हड़प्पा स्थलों तथा दूर विदेशी हड़प्पा पुरास्त्रों से निर्यात किया जाता था। उदाहरण के रूप में शंख गुजरात से, तांबा राजस्थान में स्थित खेतरी की खानों से, राखी गढ़ी के उत्खननों में जो मानकीकृत बात बटकरे एवं मोरे मिली हैं उस

0: यह साबित होता है कि आंतरिक एवं बाह्य व्यापार के नियम एक समान थे। विदेशी क्षेत्रों के साथ व्यापारिक संबंध के फलस्वरूप राखीगढ़ी का व्यापार क्षेत्र अफगानिस्तान, मेसोपोटामिया, ओमान और फारस की खाड़ी तक भी था। वहाँ से कच्चे माल के रूप में अर्धकीमती पत्थर अवशेष रूप में मिलते हैं। इस प्रकार राखीगढ़ी पुरास्थल का व्यापारिक मेलजोल भारत में ही नहीं बल्कि विदेशी क्षेत्रों तक था।
1: अब सवाल उठता है कि इस कांस्य युगीन सभ्यता का निर्माण करने वाले लोग कौन थे? ये लोग कहीं से आए होंगे या फिर यहीं के गांवों व नगरों के मूल निवासी रहे होंगे। राखीगढ़ी के टीला नंबर 7 से प्राचीन कंकाल मिले हैं। वैज्ञानिकों ने इनका विस्तृत डीएनए अध्ययन व विश्लेषण किया है। एक महिला के प्राचीन कंकाल से माइटोकॉन्ड्रिया के डीएनए अध्ययन में U2B2 माइटोकॉन्ड्रिया हैप्लोग्रुप मिला है। डेक्कन कॉलेज के पूर्व कुलपति प्रोफेसर वसंत शिंदे का मानना है,
2: राखीगढ़ी में जो हड़प्पन कंकाल मिले हैं उनकी डेट लगभग 4,500 साल पुरानी है, तो उन लोगों का डीएनए सबसे प्रथम भारत में निकाला गया है। और इसके पहले हमको हड़प्पन लोग कौन थे उसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी। उसमें मतभेद थे, कुछ लोग बोलते थे कि हड़प्पन लोग यहाँ के थे, कुछ लोग बोलते थे कि वो बाहर से मेसोपोटामिया से आए होंगे, उन्होंने इस सभ्यता को विकसित किया होगा ऐसा मानते थे। लेकिन इस डीएनए से जिसका रिजल्ट हमने एक दुनिया में सबसे प्रेस्टिजियस साइंटिफिक जर्नल है सेल, उसमें हम इसके रिजल्ट हमने पब्लिश किया है। और इसको एक दुनिया में सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन जीनोमिक्स, उसने इसको अप्रूव किया है। और उन्होंने बोला कि 2019 में जो 9 ब्रेक थ्रू रिसर्चेस हुए थे दुनिया में उसमें राखीगढ़ी का जिक्र उन्होंने किया है। इसका मतलब साइंटिफिक कम्युनिटी ने इसको एक्सेप्ट किया है। तो उसका रिजल्ट ये मिलता है कि हड़प्पन लोगों का जो जीन्स थे, जो डीएनए था, वो बहुत ही डिस्टिंक्ट था, जिसको हम एंशियंट एंसेस्टर साउथ इंडियन बोलते हैं। वो जीन्स था जिनकी शुरुआत लगभग 12,000 साल पहले हुई थी। 12,000 साल के बाद इसमें धीरे धीरे म्यूटेशन शुरू हो गया और एक डिस्टिंक्ट जीन तैयार हो गया, उसको हम एंशियंट एंसेस्टर साउथ इंडियन जीन्स बोलते हैं। और वही जीन्स हड़प्पन लोगों में आए। और ये जो जीन्स है वो प्योरली इंडिजिनस लोगों के जीन्स है, यहाँ के लोगों के जीन्स है। तो इसे पता चलता है कि हड़प्पन लोग थे, यहाँ के थे, ये पता चलता है। उसके बाद हमने ये भी किया कि हमने मॉडर्न लोगों का सैंपल्स लगभग 140 अलग अलग जो गुट है साउथ एशिया में, उनके सैंपल्स हमने 3,500 सैंपल्स मॉडर्न लोगों के सैंपल्स हमने इकट्ठा किया। और उसका हमने विश्लेषण करके उसको हम हड़प्पन जो सैंपल्स मिले थे राखीगढ़ी उससे हमने जोड़ा, तो उससे पता चलता है कि साउथ एशिया के जो मेजर पॉपुलेशन है हमको एक इंडिकेशन मिलता है। अंडमान निकोबार से लेके लद्दाख कश्मीर तक और अफगानिस्तान से लेके पूरा नॉर्थ ईस्ट तक जो सब लोग हड़प्पन लोगों के ही वंशज है इसका एक प्रमाण मिलता है। उनको वो लोग क्या रिलीजन फॉलो करते हैं, क्या कास्ट फॉलो करते हैं, उसका कोई मायने नहीं रखता। लेकिन ये पता चलता है या एक अंदाज लगता है कि अभी के जो मॉडर्न लोग है वो हड़प्पन लोगों के वंशज है। तो एक कंटिन्यूटी हमको बात दिखाई देते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट एविडेंस हमको राखीगढ़ी से मिला है।
3: राखीगढ़ी की अर्थव्यवस्था कृषि और पशुपालन पर आधारित एक मिश्रित अर्थव्यवस्था थी जिसमें शिकार, मछली पकड़ने और संग्रहण के जरिए संसाधनों का कुशल प्रबंधन किया जाता था। कृषि आधारित पशुओं के साथ साथ जंगली जानवरों के होने के भी प्रमाण मिले हैं।
4: खुराई से स्पष्ट होता है कि पालतू जानवर राखीगढ़ी में जीवन का केंद्र थे। महत्वपूर्ण पालतू जानवर गाय, भैंस, भेड़, बकरी और सुअर थे। इनका उपयोग आर्थिक और व्यवहारिक कार्यों के लिए भी होता था। गायों का उपयोग परिवहन के लिए और खेतों में काम करने के लिए किया जाता था। बैल और भैंस खेतों में हल चलाने और सामान ले जाने का कार्य करते थे। गाय और भैंस की गोबर भी एक बहुमूल्य संसाधन थी। लोग इसका उपयोग खेतों में खाद के रूप में, फर्श और दीवारों पर प्लास्टर के लिए और ईंधन के रूप में करते थे। इन अनेक उपयोगों से पालतू जानवर केवल खाने का स्रोत ही नहीं रहते, वे खेती, निर्माण और घरेलू जीवन के लिए अनिवार्य थे। भेड़ और बकरी से मांस, दूध और ऊन या बाल प्राप्त होते थे। सुअर भी पाए गए हैं, कुत्ते के अवशेष भी मिले हैं। संभव है कि ये साथियों पहरेदारों के रूप में कार्य करते थे, शिकार में मदद करते थे और बस्ती के आसपास कचरा प्रबंधन में भी सहायक रहे होंगे। पालतू जानवरों के साथ साथ जंगली जानवरों का भी महत्वपूर्ण स्थान। विभिन्न प्रकार के हिरण और एंटीलोप की हड्डियां बताती हैं कि शिकार ने पशु संसाधनों को पूरा किया। शिकार से मांस, छाल और अन्य सामग्री मिलती थी और यह घरेलू पशुओं से मिलने वाले संसाधनों की कमी को पूरा करता था। राखीगढ़ी के निवासियों ने जली और छोटे जानवरों का भी उपयोग किया। मछली पकड़ने जल स्रोतों से संग्रहण का संकेत देती है जिससे उनकी भोजन में प्रोटीन और

0: जुताई पक्षियों के अवशेष स्थानीय पक्षियों के शिकार या जाल में फंसाने का संकेत देते हैं। सरीसृप और शंखों के अवशेष नदियों, दलदली क्षेत्रों और संभवतः शंख शिल्प या व्यापार के उपयोग में की ओर भी इशारा करते हैं।
1: ये थे पंकज गोयल, एसोसिएट प्रोफेसर, डेक्कन कॉलेज, पुणे।
2: लगभग 4000 साल पहले सरस्वती नदी सूखने लग गई होगी। धीरे धीरे समस्त सिंधु सरस्वती सभ्यता के नगरों में चहल पहल कम होती चली गई होगी। वैज्ञानिकों और इतिहासकारों में इस सभ्यता के पतन के बारे में मतभेद हैं। डॉक्टर रविंद्र सिंह बिष्ट जलवायु परिवर्तन को मुख्य कारण मानते हैं।
3: 8000 से 5000 ईसा पूर्व, जिसको आजकल कॉमन एरा कहते हैं, जलवायु के वैज्ञानिक है, उन्होंने बताया है कि जैसे बहुत ज्यादा बारिश होती थी, बहुत ह्यूमिडिटी थी, बहुत बारिश होती थी 8000 से 3000 ईसा, उसके बाद ही हड़प्पा सभ्यता आती है। उस वक्त भी काफी बारिश थी। तो ये है कि सिंधु नदी अपने सारे सहायकों के साथ, पांच नदियां पंजाब की, सिंध और सरस्वती, ये बहुत जल का भंडार लेके पहाड़ों से जाके आगे जाके समुद्र में जाती थी। वह समय था जब आदमी ये बस्ती बना के रहने लगा था। उसका प्रमाण मेहरगढ़ नाम के स्थान पर है। धीरे धीरे उन्नति होते हुए हड़प्पा संस्कृति, ये जो अर्बन सिविलाइजेशन हम कहते हैं, नागर सभ्यता का उद्भव होता है। और सारे जो प्राचीन महत्वपूर्ण स्थान है, इन नदियों के किनारे ही बसे हैं, जैसे मोहनजोदड़ो सिंधु के, हड़प्पा रावी के, और गवेरी वाला सरस्वती के, कालीबंगा सरस्वती के, बड़ा वाली सरस्वती के, और राखीगढ़ी, और तमाम बहुत सारे प्राचीन स्थान सरस्वती के किनारे बसे थे, जिसमें एक प्रमुख हमने बताया भी जो राखीगढ़ी था, विशाल पांच विशाल तक नगरों में। फिर क्या होता है कि 3000 के बाद वो थोड़ा धीरे धीरे ये बारिश का कम होने लगती है। खैर इतनी कम नहीं होती, इन्होंने बहुत इंतजाम किया था पूर्व सभ्यता वालों ने, तो लेकिन उसके अंतिम चरणों में 2100 से 1900 के बीच काफी पानी कम हो गया। और 1900 ऐसा समय आया जब बिल्कुल बारिश का होना एकदम बंद हो गया। कभी फ्लैश फ्लड्स आते रहे होंगे, लेकिन एकदम जिसे कि एरिडिटी, एक्सट्रीम एरिडिटी हो गई। और उसी समय में ये सरस्वती, सरस्वती और ये इसके सहायक नदियां सूखने लगी। और वही समय है जब इसके किनारे बसे हुए सिंध और इनके सब नदियों के किनारे बसे हुए प्राचीन नगर जो है, नगर और महानगर, ये उजड़ने लगे। यानी कि आज नागर सभ्यता अब विखंडन हो रहा। लोग शहरों से क्या करते हैं, भूतहा शहरों में रह के, इसलिए वो गांव की तरफ जत्थे बना के, कोई पूरब गया, कोई दक्षिण गया, कोई उत्तर की तरफ आया। तो इस ढंग से नागर सभ्यता का विघटन हो गया। तो जलवायु का बहुत बड़ा हाथ है सिंधु सभ्यता के विघटन में। और एक दूसरा कारण जिसके बारे में आजकल विद्वान नहीं बोलते हैं, 2100 के आसपास मेसोपोटामिया में पॉलिटिकल उथल पथल हुई है। ये तो सभी जानते हैं कि मेसोपोटामिया और जिसे आजकल इराक कहते हैं, यहाँ भी नगर सभ्यता थी बहुत समृद्ध। वहाँ हड़प्पा वालों का घनिष्ठ व्यापारिक संबंध उनसे था। जो वहाँ पॉलिटिकल उथल पथल भी, जिसे 50 से 80 साल तक कहते हैं, वो समय है जबकि हमारे व्यापार पर बहुत धक्का लगा। तो हमने जो उस व्यापार की वजह से, मतलब ये माइनिंग से लेके वस्तु बनाना और लॉजिस्टिक परिवहन वगैरह वगैरह, ये सब पे इतना धक्का लगा कि हड़प्पा की ये महानगर का विघटन होने लगा।
1: लेकिन इतिहास की खोज जितनी जरूरी है, उसका संरक्षण उससे भी अधिक चुनौतीपूर्ण है। हजारों वर्षों तक इतिहास को अपने गर्भ में सुरक्षित रखने वाले टीले, विशेषकर टीला नंबर 4 और टीला नंबर 6, आज आधुनिक अतिक्रमण और निर्माण का सामना कर रहे हैं। विकास और विरासत के संतुलन पर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक युद्धवीर रावत के विचार।
4: ये सही, जहां भी खुदाई करता है या किसी स्मारक का विकास करता है, तो जरूर वहां के स्थानीय लोगों को एक तो ISI की काम करने की पद्धति का पता चलता है, और उस ढंग से वो भी कई कामों में निपुण हो जाते हैं और उसमें अपना योगदान करते हैं। जैसे हम लोग वहां पर कई सामग्री वो स्थानीय बनाते हैं, खास करके खुदाई के लिए जो औजार होते हैं, उपकरण होते हैं, और स्थानीय लोगों को वहां पर ड्राइंग के लिए, सर्वेइंग

0: हम उपयोग में लाते हैं और उनको सिखाया भी जाता है, साथ साथ उनको जो है विविध जो उपकरण है, जो जिस चीज के जो है साधन है उनके बारे में उनको जानकारी होती है, इसलिए उनका योगदान भी इसमें बढ़ जाता है। और खुदाई और अतिक्रमण को रोकने का जहां तक सवाल है, ये धीरे धीरे हम लोगों ने कई टीमों को प्रोटेक्शन किया है, उनकी हम जो है फेंसिंग कर रहे हैं और कई जो है टीलों पे हम शेड लगा करके एक जीवंत जो है संग्रहालय बना रहे हैं ताकि लोग जान सके कि क्या क्या वहां पर है। तो उसमें भी इन लोगों का योगदान रहेगा और वहां पर जो है भविष्य में कई लोगों को जो है गाइड की और इस चीज की जो है जरूरत पड़ेगी। तो मुझे लगता है कि स्थानीय लोगों का उसमें बड़ा योगदान हो सकता है।
1: राखीगढ़ी सिंधु सरस्वती सभ्यता का प्रमुख नगर है। इस सभ्यता पर हरियाणा प्रदेश गौरवान्वित है। राखीगढ़ी में एक बड़ा संग्रहालय और हड़प्पन नॉलेज सेंटर बन रहा है। हरियाणा सरकार के पुरातात्विक विभाग के उपनिदेशक डॉक्टर नरेंद्र परमार के अनुसार,
2: राखीगढ़ी के टीलों पर राखी शाहपुर और रोकी खास दो गांव बसे हुए हैं, जहां टीले प्राचीन संस्कृति के वाहक हैं और वर्तमान गांव हैं आधुनिक जीवन शैली को दर्शाते हैं। तो हरियाणा सरकार इन टीलों और वर्तमान गांव के माध्यम से हरियाणा की 10,000 साल की जो गौरवशाली यात्रा है उसको दिखाने का प्रयास कर रही है। प्राचीन समय में हरियाणा के लोगों की जीवन शैली ऐसी थी और वर्तमान समय में ऐसी थी, और इस यात्रा में क्या क्या कंटिन्यूटी है और क्या क्या बदलाव हुए हैं इसको भी हम विश्व के सामने लाने का प्रयास कर रहे हैं। राखीगढ़ी में 200 करोड़ की ज्यादा के लागत से एक विश्व स्तरीय म्यूजियम हरियाणा सरकार के माध्यम से बन रहा है और उसमें भी अतीत से वर्तमान की यात्रा है, उस पर भी विशेष फोकस रखा गया है।
3: हरियाणा पुरातत्व विभाग के उपनिदेशक डॉक्टर नरेंद्र परमार भविष्य में राखीगढ़ी को यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल होने के प्रति आशान्वित हैं।
1: स्थानीय युवाओं को हेरिटेज गाइड के रूप में प्रशिक्षित करना और होम स्टे व सांस्कृतिक पर्यटन से जोड़ना ही इस स्थल को जीवंत बनाए रख सकता है। राखीगढ़ी केवल एक खुदाई स्थल नहीं, एक जीवंत गांव भी है, जहां अतीत और वर्तमान एक साथ सांस लेते हैं, जहां किसान अपने खेत जोतते हुए मिट्टी में दबे इतिहास को स्पर्श करते हैं। इस अनूठी सह अस्तित्व की भावना पर राखीगढ़ी के सरपंच दिनेश का क्या कहना है, आइए सुनते हैं।
4: हमारे गांव के आर्टिस्ट, क्राफ्टमैन, महिलाएं सबको एक रोजगार के रूप में विकसित गांव धीरे धीरे हो रहा है। हमारे गांव को लिविंग हेरिटेज लैंडस्केप के रूप में विकसित करने के लिए हम पुरजोर प्रयास करते रहते हैं और एक एक्सपोजर मिलता है कि देश विदेश से घूमे हुए लोग हमारे यहाँ आते हैं, उनके आइडियाज हम हमारे साथ शेयर करते हैं और उनको हम एग्जीक्यूट भी करते हैं उन आइडिया को लेके। तो वैसे प्रयास में हमने मतलब एक पूरी बड़ी गाइड टीम को विकसित किया राखीगढ़ी में, ट्रेडिशनल फूड बनाने वाली महिलाओं को विकसित किया है और हमारे जो क्राफ्टमैन है उनका तो कहना ही अलग है। हमारे गांव की कई महिलाओं की दरिया बाहर के कंट्री में बहुत डिमांडिंग है। हमारे गांव की लेडीज जो रोटी बनाने के लिए बोहिया बनाते हैं सरकंडे और पन्नी के, वो बहुत फेमस है। महिलाएं हमारी बाहर के बड़े स्कूल्स में क्राफ्ट वर्कशॉप के लिए जाने लगी है। आगे के प्लान के तौर पे हम हमारे गांव के 200 साल पुराने चौपाल को एक लिविंग हेरिटेज लैंडस्केप के रूप में देख रहे हैं, कुछ हवेलियों को बाहर के लोगों के साथ मिलकर विकसित कर रहे हैं।
3: राखीगढ़ी कभी विशाल महानगर रहा होगा। राखीगढ़ी का पूरा रहस्य अभी धरती के गर्भ में ही छिपा है। अभी तो उन रहस्यों से भी पर्दा उठना बाकी है जो लिपि को पढ़ने का मार्ग दिखाएंगे। युवा पुरातत्वविद डॉक्टर दिशा अहलूवालिया ने समय समय पर हुए उत्खनन कार्यों में भाग लिया है। खुदाई के दौरान उन्होंने करीबन 400 मिट्टी की ईंटें निकाली थी। दिशा अहलूवालिया का मानना है कि अभी बहुत काम होना बाकी है।
5: अभी बहुत बड़ा हिस्सा है राखीगढ़ी का जो कि हिंटरलैंड एरिया भी है। हमें नहीं पता है कि सिटी का छोर कहाँ खत्म हो रहा था और उसका सैटेलाइट एरिया कहाँ शुरू हो रहा था। हमें अभी तक जो जानकारी है वो स्टैटिग्राफी और जो कितने सालों तक वहाँ ऑक्यूपेशन रहा है हमें वो पता है, बट कितना और बड़ा सेटलमेंट हो सकता है हमें उसकी जानकारी पूरी तरीके से नहीं है। धोलावीरा के जैसे एक हाइड्रोलिक सिस्टम होना बहुत जरूरी है और राखीगढ़ी में जो बड़े बड़े ड्रेन्स मिलते हैं हमें

0: टेस्ट मिलते हैं और जो लास्ट एविडेंस टैंक का मिला था वो ये बताता है कि एक बहुत ज्यादा इंटरकनेक्टेड हाइड्रोलिक सिस्टम है, पर अनफॉर्चुनेटली हम उसको आगे कंटिन्यू नहीं कर पाए। बट ये मान सकते हैं कि ऐसे बहुत छोटे छोटे, जो लोग को लगे कि बहुत छोटी जानकारी है बट रिसर्च के लिए बहुत बड़ी जानकारी हो सकती है। राखीगढ़ी में लोग कैसे रहते थे, उनका सिस्टम कैसा था, ड्रेनेज सिस्टम, हाइड्रोलिक सिस्टम, उनका यू नो डिजास्टर मैनेजमेंट सिस्टम कैसा था, उनका सिटी का लिमिट कितना बड़ा था, फोर्टिफिकेशन था नहीं था, बैस्टियंस थे, डबल फोर्टिफिकेशन था, सिंगल फोर्टिफिकेशन था, ये सब जानकारी अभी जाननी जरूरी है। बैरियर अभी भी एक्सकवेट हो रहे हैं बट उसके अलावा भी हमें ये आगे इन्वेस्टिगेट करना जरूरी है कि जो जहां बैरियर्स हो रहे हैं, माउंट सेवन जिसको बोला जाता है, जहां मचो हरप्पन बैरियर्स मिलते हैं, वहां पे जो अर्ली एविडेंस मिले हैं अर्ली हरप्पन के, ये दर्शाता है कि जो अर्ली हरप्पन लेवल जो है वो काफी बड़ा रहा है। तो अर्लीस्ट एविडेंस जो साइट पे मिलता है उसका स्केल जानना, वहां से लेके मचौर तक कैसे सेटलमेंट चेंज हुआ है, कैसे सिटी डेवलप हुई है, ये सब बातें जो है, ये कहानी जो है अभी भी बाकी है।
1: उनका ये भी मानना है कि जैसे जैसे तकनीक उन्नत होगी इस पुरातात्विक स्थल को और अच्छे से समझा व जाना जाएगा।
0: GPR मैग्नेटोमेट्री ऑलरेडी प्रोफेसर वसन शिंदे ने किया है बट उसके अलावा रिमोट सेंसिंग है, टेस्ट पिट्स ले सकते हैं, फील्ड वॉकिंग है, कई ऐसी टेक्निक्स है आगे फ्यूचर में आएंगी जो हमें ये एविडेंस बहुत क्लियरली बताएंगी। बट एज ऑफ नाउ अभी हम रिमोट सेंसिंग बहुत अच्छे से कर सकते हैं अगर हम उस पे काफी मेहनत करें और सैटेलाइट इमेजरी और स्पेशल एविडेंस के हिसाब से हम जान सकते हैं कि इंडिकेशन लगा सकते हैं साइट के बारे में।
2: राखीगढ़ी की मिट्टी में दबी हर पक्की ईंट एक गाथा सुनाती है, हर मन का एक हुनरमंद हाथ की कहानी कहता है और हर अवशेष उस महान मानव जीवन का साक्ष्य है।
1: सवाल बस इतना है, क्या हम इतिहास की इस पुकार को सुनने के लिए तैयार हैं?
3: रूपकों के अखिल भारतीय कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आपने सुना रूपक, राखीगढ़ी मिट्टी के नीचे सोया महानगर। आलेख डॉक्टर अप्पू सहारन का था, वाचन स्वर उषा मलिक व पंकज भारद्वाज का था, कार्यक्रम का संपादन दिलीप अहिरवार ने किया, प्रस्तुतकर्ता विनय कुमार। यह कार्यक्रम आकाशवाणी रोहतक के सौजन्य से प्राप्त हुआ।

0: ये आकाशवाणी है। रवि वासरिया अखिल भारतीय संगीत सभा के आज के प्रसारण में अब हम आपके लिए श्री एनआर प्रशांत का कर्नाटक शास्त्रीय गायन प्रस्तुत कर रहे हैं।
1: दिस इज आकाशवाणी इंटरनेट ब्रॉडकास्ट ऑफ रवि वासरिया अखिल भारतीय संगीत सभा। वी विल नाउ ब्रिंग यू द कर्नाटक क्लासिकल वोकल रिसाइटल बाय श्री एनआर प्रशांत।
0: श्री एनआर प्रशांत कर्नाटक शास्त्रीय संगीत के एक प्रतिष्ठित गायक हैं, जो संगीत क्षेत्र में अपने अभिनव और शोध आधारित असाधारण योगदान के लिए जाने जाते हैं। श्री एनआर प्रशांत की संगीतमय यात्रा का शुभारंभ बेंगलुरु में विद्वान आर के पद्मनाभ के मार्गदर्शन में हुआ। श्री तिट्टे कृष्णयंगार जैसी महान विभूतियों से प्रेरित होकर आपने विदुषी नीला रामगोपाल के सानिध्य में अपना गहन प्रशिक्षण जारी रखा। तत्पश्चात प्रोफेसर आर विश्वेश्वरन जी के आदरणीय मार्गदर्शन में आपने कर्नाटक शास्त्रीय संगीत की सूक्ष्म बारीकियों की गहरी समझ प्राप्त की। आपने मैसूर विश्वविद्यालय से इंस्ट्रूमेंटेशन टेक्नोलॉजी में इंजीनियरिंग की उपाधि प्राप्त की थी। आप वर्तमान में आकाशवाणी के प्रतिष्ठित ए ग्रेड कलाकार हैं। आपकी संगीतमय यात्रा की एक विशेष और अद्वितीय उपलब्धि एक राग संगीत सभाओं का सफलतापूर्वक संचालन करना है। वर्ष 2001 में आपको सिंगापुर इंडियन फाइन आर्ट्स सोसाइटी में वरिष्ठ संकाय सदस्य के रूप में आमंत्रित एवं नियुक्त किया गया था।

0: लीजिए अब आप सुनिए मैसूर वासुदेवाचार्य के कृति देवी रमे मानवाब्दि तनये, जो राग वसंत तथा आदिताल में निबद्ध हैं।
1: यू विल नाउ लिसन टू अ कंपोजिशन ऑफ मैसूरु वासुदेवाचार्य देवी रमे मामवाब्दि तनये इन द राग वसंता सेट टू आदिताल।

0: श्री एनआर प्रशांत अपने गायन को जारी रखते हुए अब प्रस्तुत कर रहे हैं रामनाथपुरम श्रीनिवास अयंगार की एक रचना परम पावन रामा, जो राग पूर्वी कल्याणी आदि ताल में निबद्ध हैं।
1: कंटिन्यूइंग हिज वोकल रिसाइटल, श्री एनआर प्रशांत विल नाउ प्रेजेंट अ कंपोजिशन ऑफ रामनाथपुरम श्रीनिवास अयंगार परम पावन रामा, इंद्र राग पूर्वी कल्याणी, सेट टू आदिताल।

0: ये था तनी आवर्तनम, जिसे मृदंगम पर ए राधेश, घटन पर शरद कौशिक ने प्रस्तुत किया।
1: That was तनी आवर्तनम played on the मृदंगम by ए राधेश and on the घटन by शरद कौशिक।
0: श्री एन आर प्रशांत अपने गायन का समापन रामनाथपुरम श्रीनिवास अयंगार की एक तिल्लाना से कर रहे हैं, जो राग पूर्ण चंद्रिका आदि ताल में निबद्ध हैं।
1: श्री एन आर प्रशांत concludes his vocal recital with a tillana of Ramanathapuram Srinivasa Iyengar in the rag Purnachandrika set to Aditaal.

0: इसके साथ ही रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा में श्री एनआर प्रशांत का कर्नाटक शास्त्रीय गायन अब संपन्न होता है। संगत करने वाले थे वायलिन पर सीवी श्रुति, मृदंगम पर ये राधेश और घटम पर शरद कौशिक।
1: विद दैट वी कंक्लूड द कर्नाटिक क्लासिकल वोकल रिसाइटल बाय श्री एनआर प्रशांत इन द ब्रॉडकास्ट ऑफ रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा। He was accompanied on the violin by C.V. Shruti, on the mridangam by A. Radhesh, and on the ghatam by Sharat Kaushik.
0: इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग आकाशवाणी के मैसूर केंद्र पर की गई और इसे आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित किया गया।
1: This program was recorded at the studios of Akashvani Mysuru, and the broadcast came to you from Akashvani Delhi.
2: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। अब से कुछ ही क्षण बाद समाचार होंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
3: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आशुतोष मिश्र। नई दिल्ली के सत्य निकेतन इलाके में आज दोपहर एक बहुमंजिला इमारत ढहने से 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोगों के मलबे में फंसे होने की आशंका है। अब तक 11 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला जा चुका है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने घटनास्थल का दौरा कर स्थिति का जायजा लिया। संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि हादसे के लिए जो भी जिम्मेदार पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
4: 11 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। जो भी व्यक्ति इसके जिम्मेदार हैं, चाहे वो बिल्डिंग का मालिक है या अधिकारी है, क्योंकि बिल्डिंग पुरानी थी और इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन का रेनोवेशन का काम चल रहा था। बेसमेंट में किसी प्रकार की खुदाई चल रही थी जिसके कारण से पिलर जो है वो हिला और वो पूरी बिल्डिंग ढह गई। पीजी के नाते ये बिल्डिंग काम कर रही थी, बच्चे इसके अंदर थे और लगातार सभी एजेंसी काम कर रही है। हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है इन बच्चों की पहले जान बचाई जाए। दोषियों को छोड़ा नहीं जाएगा, ये बिल्कुल निश्चित रूप में कह रही हूँ।
3: दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू भी घटनास्थल पर पहुंचे। उन्होंने कहा कि स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है और जरूरतमंदों तक हर संभव सहायता पहुंचाई जाएगी। एनडीआरएफ के महानिरीक्षक एनएस बुंदेला ने बताया कि एनडीआरएफ की 2 टीमें मौके पर बचाव कार्य में जुटी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने दिल्ली में इमारत ढहने की घटना पर दुख व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने बताया कि उन्होंने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, दिल्ली पुलिस आयुक्त और राष्ट्रीय आपदा मोचन बल एनडीआरएफ के महानिदेशक से बात कर स्थिति की जानकारी ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि अधिकारी घटनास्थल पर राहत और बचाव कार्य में जुटे हैं तथा हादसे से प्रभावित लोगों की मदद की जा रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने

0: स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। उन्होंने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के निदेशक और केंद्र सरकार के अस्पतालों को हर संभव चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने युवाओं से सोशल मीडिया का रचनात्मक उपयोग का आह्वान किया है। उन्होंने नशीले पदार्थों से दूर रहने और अपने दोस्तों को भी नशे से दूर रहने के लिए भी प्रेरित करने का आह्वान किया है। असम के गुवाहाटी में गीतानगर कॉलेज के स्वर्ण जयंती समारोह में श्री राधाकृष्णन ने कहा कि विद्यार्थियों को जिम्मेदार फैसले लेने और अपने समय, स्वास्थ्य तथा भविष्य की रक्षा पर ध्यान देना चाहिए। असम के विकास का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि पिछले 5 वर्षों में राज्य की अर्थव्यवस्था में 45% की वृद्धि हुई है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए पूर्वोत्तर सहित हर राज्य और क्षेत्र का समावेशी विकास जरूरी है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने देश के तेजी से बढ़ते स्टार्टअप इकोसिस्टम को महानगरों से आगे ले जाने और विज्ञान, स्टार्टअप तथा उद्योग के बीच मजबूत संबंध बनाने पर बल दिया है। कोलकाता में राइज कॉन्क्लेव के उद्घाटन में डॉ सिंह ने कहा कि दूसरे और तीसरे स्तर के शहरों में नवाचार की क्षमता पहचानने की जरूरत है। ईरान और अमेरिका के बीच तनाव लगातार बढ़ रहा है। क्षेत्र में बढ़ते सैन्य टकराव के बीच दोनों देश एक दूसरे पर हमले कर रहे हैं। ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स IRGC ने कहा है कि उनके एरोस्पेस फोर्स ने कई बैलिस्टिक मिसाइलों से एक अमरीकी विमान वाहक पोत और एक विध्वंसक पोत को निशाना बनाया। ईरान ने इन हमलों को दिन में अमरीका द्वारा ईरानी तेल टैंकरों पर किए गए हमलों की जवाबी कार्रवाई बताया। इंडोनेशिया में ज्वालामुखी विस्फोट के कारण 8 हवाई अड्डों पर परिचालन अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया गया। इससे 1.5 लाख से अधिक यात्री फंस गए हैं। परिवहन मंत्री रूडी पूर्वा गांधी ने बताया कि अब तक 712 उड़ानें प्रभावित हुई हैं। जकार्ता के सोकार्नो हट्टा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने आज सुबह अनाक काकाटाऊ ज्वालामुखी से निकली राख के हवाई क्षेत्र में पाए जाने के बाद सबसे पहले परिचालन निलंबित किया। चीन के शेंझेन में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने चाइना मास्टर्स बैडमिंटन का खिताब जीत लिया है। पुरुष डबल्स फाइनल में भारतीय जोड़ी के चीन के हे जी टिंग और रेयान जियांग यू को हराया। इस वर्ष यह उनका दूसरा सुपर 750 और कुल मिलाकर चौथा खिताब है। सात्विक चिराग की जोड़ी इस टूर्नामेंट में 2023 और 2025 में उपविजेता रही थी। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashwani, the news read by Aditi Lumba. A multi-story building housing a student paying guest accommodation collapsed in Satyaniketan area of Delhi this afternoon. 3 persons have lost their lives and 11 people have been rescued so far, while several students are feared trapped under the debris. A major rescue operation involving multiple emergency and disaster response agencies is underway. Delhi Chief Minister Rekha Gupta visited the mishap site and took stock of the situation. Talking to media after the visit, Ms. Gupta said relief and rescue operations are continuing on a war footing. She said those found responsible for the incident will not be spared. Delhi Lieutenant Governor Taranjit Singh Sandhu also reached the mishap site and oversaw the rescue operations. Talking to media, Inspector General of the National Disaster Response Force, N.S. Bundela, said that 2 NDRF teams comprising 70 personnel are currently working on the site. President Draupadi Murmu, Vice President C.P. Radhakrishnan and Prime Minister Narendra Modi have expressed grief at the loss of lives in the incident. UN Home Minister Amit Shah said he spoke with the Delhi Chief Minister, Delhi Police Commissioner and the Director General of NDRF and took stock of the situation. Union Home Minister Amit Shah has said the government has prepared a 3-year roadmap to make country drug-free by 2029. He said the roadmap will be based on a 4-pillar approach aimed at dismantling narcotics networks. Mr. Shah was addressing a press conference at Panaji in Goa. He said a drug-free youth will play a crucial role in achieving the vision of a developed India by 2047.
2: 2029 तक भारत को नशा मुक्त बनाने के लिए एक रोड मैप बनाया है।
3: We have prepared a roadmap to make India drug-free.

साढ़े करके उच्ची हो गई हो, उन्हें अंबरों तारे तोड़ ले, साड़ियां खुशियां दे रस्ते उन्हें अपने घर वल मोड़ ले, असी नीवे आओ केंदी उदे लायक नहीं, साथों तोड़ के रिश्ते उन्हें उच्चियां दे संग जोड़ ले।

0: चीनी के प्यारा विच नील पै गया हो कहता गल नहीं बनी कि जगह मिस पूजा होने की वास्तविक प्रोग्राम चल रहा जी सौगात में थोड़ा दोस्त अरुण थोड़े नाल इस वेल्ले बने हुए हैं साडा नंबर है जी 0181 4342 171 यानी कि 0182342171 यह नंबर डायल करके तुम भी इस प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हो तो कर सकते हो जी अपने पसंदीदा गीतों फरमाइशा के नाले दिल दिया गल्ला बातें सो अगले दोस्त भी आए जी आप देखते कौन आए हैं हेलो
1: हाँ जी
0: बाद कॉल करने में टाइम नहीं लग गया कि प्रोग्राम भी नहीं सुने अच्छा क्या नाम गीत सुनाया आज
1: जी दलाई उसका जदार संधू का गिरदी वे लौण भी जी
0: क्या बात है जी बिल्कुल ठीक है बारिश भी पैना रही है बस ते
1: आका के लौण पे जुगी
0: बिल्कुल बिल्कुल जी कॉल करने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया थोड़ी फरमाइश पूरी करने जा रहे हैं
1: थैंक यू
0: ओके जी

0: बिल्कुल जी, अमेरिका गृह दिवे लोन पे चिकी की तो जगह से दीदार संधू और कुलदीप कौर होना दिया वहां से मीठे प्रोग्राम चले जी सुगा तेले दोस्तों आगे नहीं। हेलो हेलो हेलो
1: हेलो
0: सत्रीकाल जी, बहुत बहुत स्वागत है जी प्रोग्राम सुगा दोस्त।
1: और सुनाओ की हाल चाल है
0: जी? बहुत बढ़िया जी। कौन गल कर रहे हो तो कितने गल कर रहे हो?
1: दिल्ली तो बोलने भी है जी। मनजीत कौर।
0: हाँ जी मनजीत कौर जी, की हाल चाल है थोड़े?
1: बस ठीक है जी। पर क्या
0: चलो भाई, आवाज थोड़ी अज बड़ी घट आ रही है।
1: हाँ पता नहीं क्यों
0: बिलकुल ठीक है जी। मैं थोड़े लिए गीत प्ले करने जा रहे हैं। कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया जी। थैंक यू जी।
1: थैंक यू।

0: हाथ वक्की ते ना रखवे
1: वक्की हाथ लगदा ते दोरी हो जानी है सवाद ते बहाने होर लानी है गाल नाल लग नी गाल नाल लग गाल नाल लग गला मुक जान सारिया
0: हाथ लावे

0: तुम सुधार तक में दोस्तों ना नाल ते नंबर है साढ़े सिफर एक सौ इक्यासी तेई बताली एक सौ इकहत्तर यानी कि 0981234171 इन नंबर डायल करके तुम इस प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हो तो कर सकते हो जो अपने पसंदीदा गीतों की फरमाइशा तो नाले गल्लां बातें तो साढ़ा वट्सअप नंबर है किसी तकनीकी खराबी के करके जोड़ा है सेवा देख नहीं है सो जेकर तुम वट्सअप तो कोई मैसेजेस कर रहे हो तो वो असी थोड़े तो क्षमा मांगते हैं क्योंकि उस मैसेज में इस प्रोग्राम में शामिल नहीं कर पाएंगे क्योंकि साढ़े तक वो मैसेजेस जोड़े ने फिलहाल नहीं पहुँच रहे सो अगले कॉलर दोस्त आ गए जी देखते हैं कौन आए हैं हेलो
1: हेलो सर हर्ष जी नमस्कार
0: नमस्कार जी बहुत बहुत स्वागत है प्रोग्राम स्वागत विच
1: मैं कर्मा सागर डेरा कॉलोनी फाइल का तो बोल रहा सर
0: हां जी कर्मा सागर जी की हाल चाल है थोड़े
1: बहुत बढ़िया सर जी तुम्हारा प्रोग्राम एंजॉय कर रहे हैं बहुत बढ़िया चल रहा है प्रोग्राम चलो
0: बहुत बहुत शुक्रिया जी तो और नाल नाल की कर रहे थे इस वेले
1: नाल बैठे तुम्हारा प्रोग्राम ही सुन रहे थे खाना खुना खा के नाल आराम कर रहे हैं
0: चलो बहुत बढ़िया गल है तो केड़े गीत सुना दिए फिर जी
1: जसवंत
0: नूर लाल सर जी बिलोनी तेरे नखरे ने सारे बेंट के बेंट के बरांटे के आए अच्छा बिल्कुल ठीक है जी मैं थोड़ी फरमाइश पूरी करने जा रहा हूँ कॉल के अंदर बहुत बहुत शुक्रिया
1: धन्यवाद
0: थैंक यू जी थैंक यू

0: बिल्कुल जी, मैंने पता ही नहीं लग्या कद प्यार हो गया। ये तो जगह बबू मोहन साहब और सुनिधि चौहान जी थे वहां से थे प्रोग्राम शरद जी स्वागत है दोस्तों आगे नहीं। हेलो
1: हेलो, नमस्कार जी।
0: नमस्कार जी, बहुत बहुत स्वागत है प्रोग्राम स्वागत विच। जी बहुत शुक्रिया जी। कौन गल कर रहे हो तो कितों गल कर रहे हो?
1: श्री गुरु रविदास नगर मलोक तफकीर कर रहे हैं जी।
0: हाँ जी, रसगनिया साहब की हाल चाल है जी थोड़े?
1: बहुत बढ़िया, वो सुनाओ
0: जी। साढ़े बहुत बढ़िया ने, तो मौसम कैसा है थोड़े?
1: मौसम ठंडा नहीं है वैसे।
0: ठंडा हो गया ना, मौसम थोड़ा ठंडा हो गया। इतने भी ठीक है जी, हल्की हल्की हवा जी चल रही है ठंडी ठंडी। सो केड़े गीत दी फरमाइश लेके आए हो?
1: आशा सिंह मस्ताना दा सवाल करका आ गई जबूर पे आ
0: जी। बिल्कुल ठीक है जी, थोड़ी फरमाइश मैं पूरी करने जा रहा हूं। काका जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी।

प्रोग्राम सौगात अपने दोस्तों के नाल पर इस प्रोग्राम में इतने खत्म करेंगे थोड़े तो लेनी पड़ेगी इजाजत क्योंकि हम तो कुछ पलों के बाद बात का जरा एक वचन होना सो इस प्रोग्राम में मैंने इतने खत्म करेंगे दो इजाजत पर तुम्हें कितने नहीं जाना क्योंकि हम तो कुछ पलों के बाद अगला प्रोग्राम लेकर फिर हाजिर होंगे तब तक बने रहो आकाशवाणी पंजाब के नाल।

गुरबाणी प्रभु दी उस्तत है, सच्ची सिफत सलाह है, सच्चे दी कीर्ति है। मनुखी मन अते इंद्रियां दा उचित प्रयोग यही है कि इन्हां नूं चंगे पासे लाया जावे। इस नाल समां भी सफल हुंदा है ते इंद्रियां दा परिवार भी सफल हुंदा है, पर यह समां प्रभु दी कृपा सदका ही टुकदा है। सूही राग विच उचारे हुए शब्द विच पंचम गुरदेव बेनती करदे हुए फरमाउंदे ने, हे दीना उत्ते दया करन वाले दयालु प्रभु, मेरी बेनती सुनो। जिस तरह साधु जन सदा प्रभु दे गुण गा के रस माणदे हन, अमृत रस प्राप्त करदे हन, कृपा करो मेरे लई भी ऐसा जोग बनाओ कि जिस वेले मेरी रसना भी प्रभु दा नाम उचार सके। हे प्रभु जी, आप जी दी याद सिमरन ही मनुखा जीवन है। जिस उपर प्रभु जी आप मेहर करदे हो, उही आप दी निकटता हासिल कर सकदा है। आप उससे दे ही अंग संग हो जांदे हो। प्यारे जीवानू आप जी दे सच्चे नाम दी भुख हुंदी है, ते इस नाम दे दाते प्रभु जी आप ही हो। सृष्टि विच रमे हुए राम नू चेते कीत्या ही संतां प्रभु प्यारिया ने आत्मिक सुख माणिया है, ते ए दात सब किछ जाननहार प्रभु दे हाथ विच ही है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे अंग 743 ते फरमान है, से संजोग करो मेरे प्यारे, जित रसना हर नाम उचारे। इस शब्द का गायन कीता है भाई गुरमेज सिंह ते उन्हां दे रागी जत्थे ने।

से संजोग करो मेरे प्यारे, जित रसना हर नाम उचारे। इस शब्द दा गायन कीता सी भाई गुरमेज सिंह ते उना दे रागी जत्थे ने। आपे बहु बिद रंगला सखिए मेरा लाल, नित रवै सुहागणी देख हमारा हाल। इसी तरह ही फरमान है, आपे हर एक रंग है आपे बहु रंगी। गुजरी राग विच उचारे हुए शब्द विच पंजवें पातशाह मन नू मोह लैण वाले प्रभु नू प्राणा दा आसरा जिंद जान मंदे ने। उस रंगले प्रभु नू अपने हिरदे विच वस्या जान के उसकी अश्चर्ज लीला नू वेखते हुए प्रसन्न हुंदे ने ते हिदायत करदे ने कि दिने राती उस प्यारे प्रभु की आराधना करन दे कारज विच ढिल नहीं करनी चाहीदी। अपने मन दा हठ त्याग के संतां दी सेवा भावना रख के मन नाल करनी चाहीदी है। उस प्रभु नू जेते कीत्यां मन विचों विकारां दा जंजाल लह जांदा है, मन आनंदित हो जांदा है, उसकी आराधना करनी बनती है। फिर जदों उस नाल मिलाप हो जांदा है तां उस आनंद की महिमा बयान तो परे है। इसे करके फरमान है, दिन राती आराधो प्यारो निमक न कीजै टीला, संत सेवा कर पावनी लाइए त्याग मान हाठीला। इस शब्द का गायन किया है भाई गुरिंदर सिंह होरां दे रागी जत्थे ने।

0: दिन राती आराधो प्यारो निमक न की जैटी ला संत सेवा कर पावनी लाइये त्याग मान हठीला। इस शब्द अगायन की तसी पाई गुरिंदर सिंह ते उना दे रागी जत्थे ने। हुण सरवण करदे आं इस शब्द दी व्याख्या। व्याख्याकार ने प्रिंसिपल बलदेव सिंह।
1: यह पावन शब्द श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पवित्र अंग 478 गुजरी राग विच श्री गुरु अर्जन देव जी दे पवित्र मुखवार बंध तों उचारिया होया है। गुरु साहिब जुग्यासु नूं संबोधित हुंदे होए फरमाउंदे हन कि हे प्यारे गुरसिखो, परमात्मा दा नाम जपो, उस दी आराधना दिन रात स्वास स्वास करदे रहो। दिन राती आराधो प्यारो निमख ना कीजै ढीला। इन्हां पावन पंक्तियां विच आराधो शब्द आया है जो कि आराधना शब्द तो बनिया है। आराधना पुरातन संस्कृत का मूल शब्द है जिसका अर्थ है पूजा करना, भक्ति करना, इबादत करना। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी विच आराधना शब्द की वरतों

आओ जी, तू आओ हमारे हर जस श्रवण सुनावना। तुद आवत मेरा मन तन हरिया, हर जस तुम संग गावना। इस शब्द गायन की तसी पाई बख्शीश सिंह ते उन्हां दे रागी जत्थे ने।

0: कौन भला पहला
1: वाइन चलेन तुम गुर पैर हलायन फेरन सिर उड़ उड़ावा चट पाए वेखनो हसे कर जाए रोटियां कारण पूरे ताला पछड़े धरती नाल गावन गोपियां गावन कान गावन सीता राजे राम निरभउ निरंकार सतनाम जका किया सगल जहान सेवक सेवा कर्म चढ़ाओ पिनी रंजना मंचाओ सिखी सिखिया गुर विचार नदरी कर्म लगाए पार कोलू चरखा चक्की चट थलवार बहुत अनंत लटू मदानिया नगा पंखी पौधिया ले नसा सुए चार पुआया जंत नानक पौधा जंत नानक बंधन बन पुए सोए पाया किरत नचे सब कोई नच नच हसे चले सिरे उड़ ना जाई सिदना होए नचने कुदन मन का चाओ नचने कुदन मन का चाओ नानक जिन मन पाओ तिना मन पाओ कौड़ी ना उतरा।

0: भेल हर मन मंदे हम रख कर लैया नानक हर कम हर कम हर कम
1: सुनो तुम्हारा पहला हम च आया हम च गया हम च जमया हम च मुआ हम च दिता हम च लाया हाँ विच खटिया हाँ विच गया हाँ विच सचियार कुड़ियार हाँ विच पाप पुन विचार हाँ विच नरक सुरगियंता हाँ विच हसे

0: हर हर होया, नानक हर इक हर इक हर इक।
1: महला पहला पुरखा बिरखा तीर्था तटा में गाखेता दीपा लोहा मंडला खंडावर पंडहा अंडज जेर जुद गुजा खानी सेक जा सो मित जाने नानक सरा मेरा जनता नानक जंतु पाए कैस भाले सबना जिन करते करना किया।

0: महला पहला पड़ पड़ गड़ी लदी है पड़ पड़ परिये साथ पड़ पड़ बेड़ी पाई है पड़ पड़ गड़ी खात पड़िए जते बरस बरस पड़िए जते मास पड़िए जती आर जा पड़िए जते सास नानक लेखे एक गल हो रहो ने चकना चाक मल्ला पहला
1: लिख लिख पढ़या तेता कड़या बो तीर्थ पव्या ते तो लवे आ बो पे किया देई दुख दिया सोवे जिया अपना किया अन्न खाया साद गवाया बोध पाया दूजा पाया बस करना पैरे एनस कैरे मोनव गुता तू जागे गुरबन सूता पग पतना अपना किया कमाना अलमल खाई सिर छाई पाई अलमल खाई सिर छाई पाई मूर्खंदे पत गवाई बिन नामे किसने न पाई रह बबानी मरी में सानी अंदर जाने फिर पछतानी सदगुरु पेटे सो पाए हर का नाम मन साए नानक नद करे सो पाए आसे से तीन केवल हम मैं शब्द जलाए पौड़ी पत्री मन भांग दी घर सोहन कीर्त गाँवे नान कर्म बाहरी घर टोना लैनी पाँवे कमूला बुझने अपना अनहोंदा आपने दे हो कदी का नीच जात हो उत्तम जात सुलाए दिन मंगा फिर तुझे त्याए दे तुझे त्याए दे तुझे त्याए
2: सत्सा हो हमारा

वो एक महीने लड़के पे आई है पर तेरे हो पाई है जे वो ही कार माई है जे वो वे पूरे बिलकुआ तूरत नाई अब चोरी सेव कमाई है सेव कमाई है।

0: पहला सचकाल पूर्वत्या कल कल बताल बियो बीज पतले गेब तुग बाल जे एक होता देर तिहर तो हो नानक पाहे बारा कोरे रंग न सोए पैर च खुंब चढ़ाइए सर्व पाहो तन हो नानक भगती जे रपे कूड़े से न पे महला पहला
1: रब पाप दो राजा मेहता कूड़ हुआ सिकदार काम ने सब पुछिए बैबे करे बिचार अंधी रैयत ज्ञान में हुनी पाए परे मुर्दा ज्ञानी नचे बाजे वावे रूप करे सिगार उचे कुके वादा गावे जोदा का विचार मूरख पंडित हिकमत तुझे संजय करे प्यार धर्मी धर्म करेगा वावे मंगे मोख दुआ जति सदा वे जुतना जाने शड़ बै करबा सबको पूरा पे होवे घटना कोई आख है परवान पिछे पाइए ता नानक तो लिया जापे महला पहला
0: बदी समझ गनान का सच

0: दारू सुख रोग प्याजा सुख पाना हो तू करता करना मैं नहीं जहां करना हो बलहारी कुदरत वस्या तेरा अनुग्रह करवाओ जात में जो जोत में जाता कलकला पर भूल रहे तू सच्चा साल शुद्ध स्वाले जिनके दिल से पार पा कहो नानक करते किया बाता जो किश करना सो कर रहे महला दूजा
1: जोग सबू ज्ञान सबू वेद सबू ब्राह्मण खत्री शब्द सुर शब्द सुदर शब्द प्राकृत सब शब्द में एक शब्द मुझे को जाने पे ओ नानक तका दास है सोई निरंजन देव महला दूजा
0: एक कृष्णम सर्व देवा देव देवता आत्मा आत्मा बास देव तुझे को जाने पे ओ नानक तका दास है सोई निरंजन देव महला पहला
1: ए बंदा जल रह जल बिन

और बिन ज्ञान न हो पड़ी पड़िया हो गुनेगा तायो मी साध नवारी अध्या कल कालना केवे हो ना हो प्रचारी।

0: गुरे अमरदास तीर्थ प्यो परगामी तारने तरने अग्यंतक बदे ना सद कब गुरु रामदास तेरी सरने।
1: जगत उदारन नाम सतगुर तुठे पायो अब नाहे।

राम आव गुण पर एक गुण नाही अमृत छाड़ बिखे बिख खाई माया मोह परम पैपुले सुत दारा से प्रीत लगा एक

0: कीरत की गोरे रामदास राखो सरनाई एक अरदास पाठ कीरत की गोरे रामदास राखो सरनाई
1: सुकौटल गोर सेविय अहनिस सहज सोभय दर्शन परसै गुरु के जन्म मरण दुख जाय होवै सिफत खसम दीन नूर अर सोह कुर सोह चटिया तुद डठे सचे पातशाह माल जन्म जन्म दी कटिया सज्जन सच्चा पातशाह सिर शाह दशाह जिस पास बैठिया सोही है सबना देश सज्जन सच्चा पातशाह सिर शाह दशाह जिस पास बैठिया सोही है सबना देश सतनाम श्री वाहेगुरु साहिब जी गुजर

निर्गुण गुण नाही मैं आहियो तुमरा तोरा बाले बाले बाले बाले चरण तुम्हारे।

बिन से सगल निहोरा वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुजरी महला पंजवा मात पिता भाई सुत बंद पर तिनका बाल है थोरा अनक रंग माया के पिखे किछ साथ न चल भोरा।

को जोगी जत सिद्ध साधक खलक तप जटा जून भेख किए फिर गुरु दास को दो दिन सतगुर सुख पाए कृपा धारी जी नाम की बधाई दे गुरु रामदास को नाम की बधाई दे।

पंजन चरण समात्र तरन तारन पद सोई नाना प्रकार जिन जग कियो जन मथुरा रसना रस श्री